0: शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। अभी से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हमारी सभा जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तदनुसार 17 मई 2026 आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही होता है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुबह 7:20 पर। सुबह 8 बजे सुने वतन का राग। ये कार्यक्रम महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित होता है। आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी महावीर सिंह की शहादत दिवस पर उनके जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। आज इस कार्यक्रम का विषय है गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9 बजे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और कानून। इस विषय पर जानकारी देंगे पर्यावरण संरक्षण और कानून विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव, और इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। आज हम इस कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज का विषय है भारतीय वायुसेना। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी उल्लासकर दत्त के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 11 बजे भोपाल में आयोजित साहित्यिक गतिविधि की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। और 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप अभी से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सुन सकते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 114 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं रुद्र, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीहि यथा शमसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् ननातुरम्। हमारी प्रजाओं और गवादि पशुओं को सुख की प्राप्ति हो, इस गांव के सभी प्राणी बलशाली और उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों के प्रेरक जटाधारी रुद्रदेव को समर्पित करते हैं। मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते यच्छम च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु। हे रुद्रदेव, हम सभी को स्वस्थ व निरोग रखते हुए सुख प्रदान करें। शूरों को आश्रय प्रदान करने वाले आपको हम नमन करते हैं। आप मनुष्यों का पालन करते हुए शांति और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। हे रुद्रदेव, हम आपकी उत्तम नीतियों का अनुगमन करें। अश्यामते सुमतिम देव यज्ञया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ्वः सुम्नायन निद्विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः। हे कल्याणकारी रुद्रदेव, वीरों को आश्रय प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें। हमारे प्रयोजनों को अपने देव यजन अर्थात श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें। हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें। हम आपके निमित्त आहुतियां समर्पित करें। त्वेषं वयम् रुद्रम् यज्ञसाधम् वंक कविमवसे निह्वयामहे आरे अस्मद्दैव्यम् हेडो अस्यतु सुमति मिद्वयमस्या वृणीमहे। तेजस्विता संपन्न यज्ञीय सत्कर्मों के निर्वाहक स्फूर्तिवान ज्ञानवान रुद्रदेव की हम सभी स्तुति करते हैं। वे हमें संरक्षण प्रदान करें। देव शक्तियों के क्रोध के भागीदार हम न बन सकें, अपितु हम उनकी अनुकंपा को प्राप्त करें। दिवो वराह मरुषम कपर्दिनम त्वेषम रूपम नमसा निह्वयामहे हस्ते बिभ्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्मच्छिर दिरस्मभ्यम यंसत। सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दीप्तियुक्त सुंदर रूपवान जटाधारी वीर का हम सादर आवाहन करते हैं अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक औषधियों को धारण कर वे दिव्य लोक से अवतरित हों। हमें मानसिक शांति तथा बाहरी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें। हमारे शरीरों में समाहित विषों को बाहर निकालें। इदं पित्रे मरुता मुच्यते वचः स्वादोह स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् रास्वाच नो अमृत मर्त भोजनम् त्मने तोकाय तनयाय मृड। हम मरुद्गण के पिता रुद्रदेव के लिए यह अति मधुर और कीर्तिवर्धक स्तोत्र गान करते हैं। हे अमृत स्वरूप रुद्रदेव, आप हम सभी के निमित्त उपभोग्य सामग्री प्रदान करें। हमें तथा हमारी संतानों को भी सुखी रखें। मानो महांतमुत मानो अर्भकम मान उक्षंतमुत मान उक्षितम मानो वधीहि पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः। हे रुद्रदेव, हमारे ज्ञान और बल में संपन्न वृद्धों को पीड़ित न करें। हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें। हमारे बलवान युवा पुरुषों को हिंसित न करें। हमारी गर्भस्थ संतानों को हिंसित न करें और न ही हमारे माता पिता को विनष्ट करें। इन सभी हमारे प्रियजनों के शरीरों को कष्ट न पहुंचाएं। मानस्तो के तनये मान आयौ मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मा नो रुद्र भामितो वधीर हविष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे। हे रुद्रदेव, हमारी पुत्र पौत्रादि संतति हमारे जीवन को गौवों और अश्वों को आघात न पहुंचाएं। आप हमारे शूर वीरों के विनाश के लिए क्रोधित न हो। हविष्यान्न प्रदान करने के लिए यज्ञ स्थल में हम आपका आवाहन करते हैं। उपते स्तोमान पशुपा इवाकरम रास्वा पितर मरुताम सुम्नमस्मे भद्राहिते सुमतिर मृडयत्ता माथा वयमव इत्ते वृणीमहे। हे मरुद्गणों के पिता रुद्रदेव, जिस प्रकार पशुओं के पालन करता गोपाल प्रातः ग्रहण किए गए पशुओं को सायंकाल उनके स्वामी को सौंप देते हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से प्राप्त मंत्रों को स्तुति रूप में आपको ही समर्पित करते हैं। आप हमें सुख प्रदान करें। आपकी कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली है, अतएव हम सभी आपके संरक्षण की कामना करते हैं। आरे ते गोघ्नमुत पुरुषघ्नम क्षयद्वीर सुम्रमस्मे ते अस्तु मृडा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नह शर्म यच्छ द्विर्बर्हा। हे वीरों के आश्रयदाता रुद्रदेव, पशुओं और मनुष्यों के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई कष्ट न पहुंचाएं। हम सभी के लिए आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त हों तथा आप हम सभी को सुख प्रदान करें। हे देव, हमें विशेष मार्गदर्शन दें तथा दो प्रकार की शक्तियों से युक्त आप हम सभी के निमित्त शांति प्रदान करें। अवोचाम नमो अस्मा अवश्य वह शृणोतु नो हवम रुद्रो मरुत्वान तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। सुरक्षा की कामना करने वाले हम सभी रुद्रदेव को नमन हो ऐसा उच्चारण करते हैं। मरुद्गणों के साथ वे रुद्रदेव हमारी प्रार्थना को सुने। इस प्रकार हमारी अभीष्ट कामना को मित्र वरुण आदिति समुद्र पृथ्वी और दिव्य लोक सभी स्वीकार करें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 114 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कोई ना कोई ऐसी हॉबी विकसित करे जिसे करने में आपको मजा आता हो, जैसे पढ़ना लिखना या गार्डनिंग करना, फालतू बातों में समय बर्बाद करना जिंदगी के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और आप उसे अपनी आदत में नियमित रूप से शुमार कर सकें।

आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें निश्चित रूप से बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से जब आप अपनी आदतें बदलेंगे तो आपका भविष्य स्वतः बदल जाएगा।

भविष्य को लेकर हमारे सपनों का आकार वर्तमान में हमें उन्हें पूरा करने की हमारी क्षमताओं से बड़ा होना चाहिए। यदि हमारे सपने हमें डराते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि वे पर्याप्त रूप से बड़े नहीं हैं।

अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने से भी बुरा यदि कुछ हो सकता है तो वो है शुरुआत ही नहीं करना। ये अलग बात है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अपनी यात्रा की शुरुआत हमें ही पहला कदम बढ़ाकर करना होगा।

अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या ना करे। आधी से ज्यादा दुनिया जब सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है।

अच्छे समय के इंतजार में अपने प्रयासों को नहीं रोकना चाहिए। ध्यान रखें, जो करना है अभी और इसी समय करना है। कल की प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे तो समय भी निकल जाएगा और लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा।

किसी से मदद मिलने का इंतजार ना करें, आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं का हल खुद करें। किसी से मदद मिलने के इंतजार में समय हाथ से निकल सकता है, अवसर हमारे हाथ से निकल सकता है और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे छूट सकता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब समय है महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग का। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी महावीर सिंह को समर्पित है।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आजादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है ये मेरा अनुमान। हे परम पिता, अपने बलिदान के उस पावन नक्षत्र की मैं दिल से पूजा करता हूं, मैं उसे वरता हूं। रूसी कवि पुष्किन की ये कविता महान क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ हमेशा होती थी, जो संभवतः उनके मनोभाव का ही अनुवाद थी। जैसे कोई पुजारी अपने साथ गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ रखता है, ठीक उसी तरह क्रांतिकारी भी जेल की अंधेरी कोठरियों में बलिदान के स्वर में रची पगी कविताओं के दीप जलाकर आजादी का स्वप्न देखते थे। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर सन 1904 को शाहपुर टहला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बगावत की भावना उनमें बचपन से ही थी। राष्ट्र पर मर मिटने का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला था। सन 1925 में जब वे कॉलेज में पढ़ने कानपुर आए तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन जनता के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। किसान, मजदूर और आम लोग भी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। कानपुर का डीएवी कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। भगत सिंह और सुखदेव इसके छात्रावास में ठहरकर क्रांति की योजनाएं बनाते। इसी दल में शामिल थे कुंवर महावीर सिंह। वो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। उधर पिता देवी सिंह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की सूचना से बेचैन महावीर सिंह ने पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी जीवन और संकल्प की बात पिता से कही। पिता का जवाब आया, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मुझे तो लगता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा, सबने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तुम जहां भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पिता का ऐसा पत्र पाकर उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा, उनका संकल्प और गहरा हुआ और वो निकल पड़े क्रांति पथ पर।

पिता की सहर्ष अनुमति के बाद महावीर सिंह दल में पूरी तन्मयता से सक्रिय हो गए। सन 1927 में दल की ओर से लाहौर में कुछ लोगों को मोटर चलाने की शिक्षा का प्रबंध किया गया। महावीर सिंह पढ़ाई छोड़कर लाहौर चले गए। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह और राजगुरु को कार में बिठाकर डीएवी कॉलेज की दूसरी ओर से महावीर सिंह ही सही सलामत निकाल ले गए थे। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उनमें महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में हर दूसरे तीसरे दिन क्रांतिकारियों का जेल के अधिकारियों से झगड़ा हो जाता। उस समय वे लोग मोटे तगड़े क्रांतिकारियों पर सारा गुस्सा उतारते। भगत सिंह, किशोरी लाल, जयदेव कपूर और महावीर सिंह सबके हिस्से की मार खाते थे। जेल में जब अनशन होता तो नाक के रास्ते नली डालकर क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलवाया जाता। एक जेल अधिकारी, डॉक्टर और 8-10 तगड़े पहलवान लगते। अनशन की इस लड़ाई में महावीर सिंह सबसे कठिन पड़ते। हर बार उन्हें दूध पिलाने में आधे घंटे का संघर्ष लगता। महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके इस न्याय के नाटक में वो भाग नहीं लेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें अन्य साथियों के साथ आजन्म कारावास का दंड मिला और वे बेलारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। यहां तरह तरह के अत्याचार होते, असीम यातनाएं दी जातीं और क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहता। कभी सुपरिंटेंडेंट उन पर मुक्केबाजी का अभ्यास करता तो कभी परेड में बोझ से लाद कर पशुवत व्यवहार करता। इसके बावजूद जेल में महावीर सिंह का विरोध जारी रहता। उन्होंने पलटकर सुपरिंटेंडेंट को ऐसा घूसा मारा कि दोबारा उसने मुक्केबाजी का शौक नहीं किया। उन दिनों जेलों में बेतों की सजा बर्बरता का जीता जागता नमूना था। महावीर सिंह को 30 बेतों की सजा का हुक्म हुआ। लकड़ी के एक चौखटे से महावीर सिंह को औंधा बांध दिया गया। कपड़े उतार दिए गए। चीफ वार्डर ने अनुमति मिलते ही गिनती आरंभ की। 1। बेंत हवा में लहराया और साए की आवाज के साथ उनके शरीर पर उतरा। उस स्थान की खाल उड़ाता चला गया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। गिनती आगे बढ़ती रही। बेंत उतरता रहा, खाल उधड़ती रही। जिंदा गोश्त के रेशे हवा में छितरते रहे। ताजे खून की फुहार से जमीन लाल होती रही और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता रहा। सच तो ये है कि सहने की ये शक्ति शरीर से नहीं, विचारों से आती है। देश को लेकर उनकी चिंता और चिंतन उनके लिखे पत्र से जाहिर होता है। सन 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काली पानी की सजा पर भेज दिया गया। यहां से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो सवाई माधोपुर राजस्थान में रहने वाले उनके छोटे भाई श्री बलबीर सिंह वैद्य के पास सुरक्षित था। इस पत्र को उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने सन 1969 में लिखी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में प्रकाशित किया। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज है। भारत भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उस वीरान द्वीप में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते एक भारतीय का ये अपनों से किया गया संवाद है। इसके अंश कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे।

सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जिसकी दीवारों पर वीर सावरकर क्रांति गीत लिखा करते थे, आजादी के दीवानों के उस तीर्थ से अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए महावीर सिंह कहते हैं, परम पूज्य पिताजी, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त स्थान पर मैं कब आ गया। यही पहेली हल करने जा रहा हूं। 19 जनवरी को प्रातःकाल को लगभग 11 बजे जेलर साहब सेंट्रल जेल बिलारी आए और कोठरी का दरवाजा खोलकर सूचना दी, तुम्हारा ट्रांसफर है, पर यह नहीं बताया कि कहां को है। पूछने पर केवल इतना ही कहा कि शायद पंजाब में नए लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही देने के लिए मद्रास भेजे जाओगे। 19 तारीख की संध्या को जब मैंने सेंट्रल जेल मद्रास में पैर रखा तो मेरे जीवन मरण के साथी श्रीयुत भाई कमलनाथ तिवारी के दर्शन लगभग 2 वर्ष बाद हुए, और रात को भाई बीके दत्त और भाई कुंदन लाल जी की आवाजें सुनी। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। परंतु अलसुबह फिर कुछ निराशा की झलक नजर आई जब देखा कि तिवारी और भाई दत्त और कुंदन लाल हमसे पहले ही पृथक पृथक ले जाए गए हैं। परंतु 15 मिनट बाद ये स्थिति फिर से हर्ष में बदल गई। मोटर लॉरी में हम फिर मिल गए। बहुत दिनों का वियोग मिटा। उस समय तक मन की खिचड़ी हम पका रहे थे और मिलने के आनंद से विह्वल थे, परंतु ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोचते थे कि शायद पंजाब जाएं, बाद में यहाँ आएं। परंतु हमारी लॉरी बंदरगाह पर पहुंची और विख्यात महाराजा जहाज के दर्शन हुए। उस समय समझ में आया कि हम लोग अंडमान अर्थात काला पानी जा रहे हैं। मातृभूमि से तथा बंधु वर्ग से सदैव के लिए, अथवा कम से कम 18 साल के लिए पृथक हो रहे हैं। जिस जननी की गोद में पले हैं और धूली में लोटे हैं, उसके दर्शन से भी वंचित हो रहे हैं। आप लोगों की पदारविंद की रज से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में प्यारे देश को छोड़ते हुए हृदय में कितना ही कष्ट हुआ, परंतु साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई, जो कि इसके सम्मुख कुछ अधिक ही थी। वो थी एक साध क्रांतिकारी की दर्शनाभिलाषा पुण्य पवित्र तीर्थ स्थान की, जिसको कि भाई राम रखामल ने अपनी समाधि बनाकर पवित्र किया था, और दूसरे बंगाली तथा सिख वीरों की जो तपोभूमि रही है। और साथ ही आशा भी थी कि हमारे जीवन के बंधुगण सर्वदा साथ रहेंगे, और भी अनेक अपने कंधे से कंधा सटाने वाले भाइयों के दर्शन होंगे। 13 जनवरी की संध्या को विस्तृत नील गंभीर जलराशि की 850 मील से अधिक लंबी यात्रा करके हम इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में पहुंचे, जहां पर अपने वर्तमान साथियों को मिलने के लिए अति उत्कंठित पाया। उनकी वैसी ही दशा हो रही थी जैसी हमारी हो रही थी। यहां संप्रति लगभग 40 बी क्लास के तथा 24 सी क्लास के राजनैतिक कैदी हैं। कुछ लोगों के निकट भविष्य में हम आशा करते हैं। हमारी जेल 3 मंजिला है और पास ही कुछ गजों के फासले पर नीला स्वराशि गंभीर गर्जन के साथ किनारे से टक्करें मारती है, जो ऊपर से दीख पड़ता है। ये द्वीप समूह जंगलों से भरा हुआ सुना जाता है, परंतु खुली हुई जगहों में कुछ भारतीय लोग भी बस गए हैं जिनकी भाषा हिंदुस्तानी है। इन लोगों में से बहुत से कैदी हैं, कुछ सरकारी नौकर भी हैं और कुछ तिजारती लोग भी। अभी हाल में तो जेल वालों का कुछ ठीक ठाक हाल ही मालूम होता है, लेकिन आगे की कह नहीं सकते। हमारे पुराने साथियों में अभी हमारे साथ डॉक्टर गया प्रसाद, मिस्टर वी के दत्त, भाई कुंदन लाल जी तथा कमलनाथ तिवारी हैं। बाकी 3 साथी अभी मद्रास सूबे में होंगे, जो कि शायद अभी भी हंगर स्ट्राइक पर होंगे।

जेल की बंदिशें अनगिनत थीं, पत्र व्यवहार बहुत कठिन था, खतरे की घनघोर घटाएं मंडराती रहती थीं, इसलिए लगातार पत्र लिखना संभव नहीं था। इस क्षमा याचना के साथ महावीर सिंह आगे लिखते हैं, पूज्यवर, प्यारे भाई का क्या हाल है इसकी सूचना शीघ्र दीजिएगा। उसे केवल वैद्य ही बनने का उपदेश न देना, पर साथ ही साथ मनुष्य बनना भी बतलाना। आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो, जो मनुष्य के कर्तव्य जानता ही न हो परंतु उसे पालन भी करता हो। उसे सिखलाना कि उसका जीवन उसका नहीं परंतु समाज का है, इसलिए इस समाज की धरोहर को आलस्य तथा आराम तलबी और स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न साबित न हो। उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा ऐतिहासिक, सांपत्तिक और राजनैतिक, सामाजिक पुस्तकों का अवलोकन करने को कहिए। समाज से मेरा मतलब संकीर्णता व्यंजक समाज से नहीं है, परंतु जन साधारण के समाज से है, क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं। केवल एक बात मानता हूं मैं, उसको सबसे बढ़कर तथा मनुष्य और समाज का कल्याणकारी समझता हूं, वो है मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी मात्र के साथ कर्तव्य, बिना किसी जाति भेद, रंग भेद, धर्म तथा धन भेद के। वही मेरा उपदेश बेटी सरोजनी को है और दूसरे हमारे भाइयों को भी है। पूज्यवर, आज जब मैं देखता हूं कि सब बहनें समाज की सेवा के लिए अपने को तन, मन और धन से लगाए हुए हैं, अभागा मैं ही हूं जिसके ऐसी कोई बहन नहीं। यद्यपि ये मेरी संकीर्णता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार दूसरी बहनें भी अपनी ही हैं और मैं वैसी ही समझता भी हूं, परंतु मैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी चाहता हूं, जिसकी कुछ आशा मैं अपनी पूजनीय जिया महताब कुमारी से करता था। उनका बहुत समय से कोई समाचार नहीं पाया है, यदि हो सके तो मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। इति शुभम। पत्र शीघ्र भेजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह। पता PI 68 सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। देश की ऐसी चिंता मन में लिए वो अपनों से दूर अपनी एक एक सांस मां भारती के चरणों में अर्पित करते रहे। 12 मई सन 1933 को अपने साथ पशुवत व्यवहार के विरोध में अंडमान के बंदियों ने अनशन आरंभ किया। अनशन के छठें दिन 17 मई सन 1933 को अधिकारियों ने कैदियों को बलपूर्वक दूध पिलाने का उपक्रम शुरू किया। आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने ये देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई है। पूरा एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया गया। वो मछली की तरह छटपटाते हुए वहीं शहीद हो गए। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को बोरे में भरकर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। कभी सोचें तो ऐसा लगता है जैसे उन अथाह लहरों के माध्यम से उनका मन अपनी मिट्टी को छू रहा था। ये वैसा ही था जैसे कि लहरें उनकी अंतिम पुष्पांजलि भारत भूमि के चरणों में अर्पित कर रही थीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी महावीर सिंह के जीवन पर केंद्रित था। और अब समय है बच्चों के मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा का। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।
0: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम बाल सभा में। यहाँ पर जब भी हम लोग जुड़ते हैं तो बच्चों की दुनिया की बातें करते हैं, आपकी सोच को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा आपके जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पाठों से हम अपनी बाल सभा को जोड़ते हैं। और आज का विषय भी मुझे आप लोगों से ही मिला है। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे आने वाले थे मेरे साथ स्टूडियो में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे से एक मैसेज आया, मैम हम नानी के घर जा रहे हैं। फिर एक और बच्चे का फोन आया, मैम मैं छुट्टियों में ना बाहर जा रहा हूँ। बस फिर क्या था, विषय मिल गया मुझे। आज मैं इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, जो बहुत सारे बच्चे अपने घर जा रहे हैं, अपने दादी के, नानी के, बुआ के, मौसी के, किसी ना किसी के घर आप लोग जा रहे हैं, और ऐसे में क्या खास हम करें कि हमारी इन गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग हो जाए। क्योंकि बच्चों ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी हमें ऐसा कोई समय मिले जब हमारे पास खाली समय बहुत हो, जैसे अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी आप और बहुत सारी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी इन छुट्टियों का सदुपयोग हो। आप सोच रहे होंगे, अरे पढ़ाई से राहत मिली है और दीदी कह रही हैं सदुपयोग, हम तो खूब सोएंगे, हम तो टीवी देखेंगे और धीरे धीरे मम्मा का मोबाइल भी उठा लेंगे और फिर उसको देखेंगे। गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। बच्चों जब भी छुट्टी मिलती है, जब भी थोड़ा समय मिलता है, तो उसका सदुपयोग करना सीखिए, है ना। क्योंकि खाली समय सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं मिलता, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर होता है जो इन दिनों में छुपा होता है। अब सवाल ये है कि हम ये अवसर आज खोज लेंगे, देखेंगे कि आज आपको मेरी बातचीत से ये बात समझ में आती है या नहीं कि हमें इन छुट्टियों में जो समय मिला है उसमें छुपा अवसर खोजना आता है या नहीं। चलो, जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप क्या करती हो छुट्टियों में, तो उसने बताया कि मैं मम्मी के साथ समय बिताती हूँ। मैंने कहा, अच्छा ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भाई गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं तो आप खेलोगे, कूदोगे, आराम करोगे, मम्मी के साथ समय बिताओगे। फिर मैंने पूछा कि और पूरा दिन क्या सिर्फ आप मम्मी के साथ समय बिताते हो, तो बहुत साइड से ना अपना उसने ऐसे धीरे से मुंह दबाया, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं और एकदम से ऐसे करके हंस दी। मैं डर गई, मैं कहा ये क्या हुआ भाई, ऐसी क्या बात पूछ ली मैंने कि ये बच्ची इतनी जोर से हंस दी। तो उसने कहा, दीदी पता है आपको मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ बताओ। जब मम्मी सो जाती है ना, मैं उनके तकिए के नीचे से धीरे से उनका मोबाइल निकाल लेती हूँ और फिर मैंने उसमें बहुत सारे वीडियो गेम डाउनलोड कर रखे हैं और फिर मैं वीडियो गेम खेलती हूँ मोबाइल पर। मैंने कहा, ओ अब तो बाल सभा में ये बात मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, है ना, और उनकी मम्मियाँ भी सुन रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे मम्मी से कहनी है, वो ये है कि भाई जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास मोबाइल मत रखिए, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जितनी वेव्स आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आजकल तो बहुत कुछ इस बारे में निकल रहा है कि हमें एक निश्चित दूरी पर ही मोबाइल रख के सोना चाहिए, लेटना चाहिए। तो सबसे पहले तो मम्मी को मैंने ये कह दिया कि भाई आज बाल सभा में मेरी रिक्वेस्ट है कि फोन अपने से दूर रख के सोएं। और हाँ, ये जो आपकी बालिका है जिसने मुझे ये राज की बात बताई है कि वो तकिए के नीचे से कैसे धीरे धीरे चल के आती है, चुपचाप साइड से खड़ी रहती है और फिर धीरे से आपका मोबाइल उठा लेती है, तो आज मैंने बाल सभा में ये राज खोल दिया है, है ना। तो थोड़ा उससे भी बच के रहिए। अब मैं बच्चों से ये बात करूंगी कि वो ऐसा ना करें, इसके लिए क्या करें, मतलब सिर्फ मोबाइल ना पकड़ें, सिर्फ टीवी ना देखें, इसके लिए हम क्या करें। अब चलिए, अब आपको बताती हूँ कि जीवन कौशल भी एक चीज होती है ना। जीवन कौशल क्या, यानी स्किल्स जो आप इस दौरान सीख सकते हैं। जैसे हम इस वक्त कोई ना कोई एक कला सीख सकते हैं, जैसे कई बच्चे पेंटिंग सीख सकते हैं, जैसे कई बच्चे कुछ ना सीखे तो अनुशासन में रहना सीख सकते हैं, जैसे हम ज्यादा पढ़ नहीं रहे तो ज्यादा थक नहीं रहे हैं, खेल कूद अच्छा रहे तो अच्छी नींद आने की भी उम्मीद है। तो हम ऐसे अनुशासन में आ सकते हैं कि इस दौरान हम बच्चों सबसे पहले तो यही काम करें कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, है ना। मतलब देर रात तक सोकर बिना सूरज चाचू के आए आप अगर उनके आने के घंटों बाद उठेंगे, उनका वेलकम नहीं करेंगे, तो वो भी तो नाराज हो जाएंगे कि लो मैं आकाश पर आ गया, छा गया दुनिया पर, उजाला मैंने बिखेर दिया, लेकिन ये क्या, कितने सारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो सो रहे हैं, वो तो अपने चंदा मामा के साथ बहुत देर तक गप्पे मारते रहे रात में, है ना। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि चंदा मामा को खुश करके आप सूरज चाचू को नाराज कर सकते हो, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा अनुशासन में रहना है, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालना। हाँ, इस पर भी मुझे आप लोगों से बात करनी है बच्चों, थोड़ा पढ़ने लिखने की आदत डालिए। क्यों, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे तो किताब हाथ में उठाई नहीं कि उनको नींद आई नहीं, इधर उधर जैसे तैसे वो एक आध लाइन पढ़कर फिर सबको दिखाएंगे मैंने ये किताब खरीदी है, मैंने मम्मा से ये किताब मंगाई है। लेकिन अगर ये पूछ लो ना, इसमें से पढ़ा कितना है, तो आपको पता है बहुत से बच्चों की शक्ल उतर जाती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो अपने मम्मी पापा के साथ बुक फेयर में जाते होंगे, अच्छे अच्छे से बुक कवर देखकर कहते होंगे ये भी खरीद लीजिए, वो भी ले लीजिए, मम्मा ये स्टोरी बुक, माँ वो वाली कहानी की किताब, मम्मी वो चुटकुले की किताब, वो पहेलियों की किताब। लेकिन बच्चों एक आदत डालिए, जब तक एक किताब पूरी आप पढ़ ना लें तब तक आप दूसरी किताब नहीं खरीदेंगे। इससे पता है क्या होगा, अच्छी आदत, एक तो आपको अपने घर में एक लाइब्रेरी की तरीके से किताबों को मैनेज करने की आदत पड़ेगी। आप जो पढ़ चुके होंगे उसके बारे में आपको पता होगा कि वो आपको कहाँ जमानी है, और अगर किसी दोस्त को शेयर करनी है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि आपने भी सुना होगा ना कि ज्ञान धन ऐसा है जो देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अगर आपके पास ज्ञान से जुड़ी कोई भी चीज़ है, जैसे किताब है, कोई अच्छी कहानी है, तो उसको सुनाइए, किताब अपने दोस्तों के साथ बांटिए, है ना। जब वो पढ़ लें तो आप वापस ले लीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में एक और बात मुझे अभी आपसे करते करते ध्यान में आई कि आप अपने जो बच्चे रहते हैं कॉलोनी में उनके साथ, जो मोहल्ले में आपके दोस्त रहते हैं उनके साथ, या जहाँ भी आप रहते हो आप वहाँ पर रहने वाले बच्चों के साथ मिल के एक छोटा सा बुक क्लब बना सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा है बड़े लोग कई बार बाहर जाते हैं, मम्मियाँ जाती हैं अपने दोस्तों से सहेलियों से मिलने, इसलिए कि कभी कभी उनका मन अच्छा नहीं होता तो उन्हें लगता है अरे हम अपनी सहेली से बात कर लें, कभी पापा अपने दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ एक बुक क्लब बनाइए, उसमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप किताबें पढ़िए और सातवें दिन आठवें दिन जो आप तय करते हैं उस दिन मिलिए किसी दोस्त के घर, या मोहल्ले में कोई पार्क होगा, कोई गार्डन होगा, या किसी दोस्त के घर ही मिल लीजिए, कोई बात नहीं, आप मिलिए और फिर आप ये बातें साझा कीजिए कि आपने बुक क्लब में जो एक दूसरे को किताबें दी वो किसने कौन सी किताब पढ़ी, कहानी कहाँ की थी, लेखक कौन था, और फिर आपने जो भी पढ़ा है ना वो उन सब बच्चों के साथ आप सुनाने की आदत डालिए। देखिए दो तीन चीज़ें इससे बहुत अच्छी हो गई। एक क्या हुआ, एक तो आप बच्चों में एक चीज अच्छी हो गई कि आपने किताबों को लेकर एक मुहिम शुरू की कि भाई हम बुक क्लब बनाएंगे। फिर आपने दूसरा काम क्या अच्छा किया कि आप सबने एक एक कहानी पढ़ी। अब तीसरा अच्छा काम क्या हुआ, आपने न सिर्फ पढ़ी बल्कि दोस्तों को भी सुनाई। एक कहानी आपने सुनाई, बाकी बच्चों ने आपको सुनाई, तो सोचिए कि एक ही दिन में आपको कितनी नई कहानियां पता चल गई। है ना अच्छी सी बात। एक और राज की बात बताऊं, आप जब कुछ भी खड़े होकर सुनाते हैं तो आप में बोलने का कॉन्फिडेंस भी आता है, तो ये भी एक कौशल है ना, वक्तव्य कला बोलते हैं ना, तो ये भी एक कला है कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। तो ये भी आप गर्मियों की छुट्टियों में सीख सकते हैं। और फिर मैं आपसे बोल रही थी कि आप अनुशासन थोड़ा सा अपने भीतर लाइए, है ना। छुट्टियों का कितना फायदा हो जाए यदि हम बिना किसी की दबाव के, मतलब बिना मम्मी के डांटे, बिना पापा के डांटे, अगर हम खुद समय से उठ जाएं, समय से नहा लें, समय से सारे काम कर लें, तो आप सोचो कितना अच्छी बात होगी ये, तो है ना। और तो और एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी, वो ये कि आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके चाचा मामा इन सब के बच्चे होंगे, वो भी आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेंगे कि अरे दीदी तो इतनी टाइम से सारे काम कर लेती है, भैया तो देखो कितने अनुशासन में रहता है, मैं भी आज से यही करूँगी, है ना। तो अब अनुशासन से जुड़ी हुई एक कहानी जो मुझे आपको सुनानी है, जो बच्चे जानते हैं बाल सभा में कि मैं आपको हर बार सुना रही हूँ, और वो है बछेंद्री पाल की कहानी। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से आपको मैं कुछ कुछ अध्याय बाल सभा में सुना रही हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ उनकी यात्रा है बल्कि उस यात्रा का विवरण तो है ही, एक बहुत अच्छी बात है बेटा कि ये उनकी जिंदगी का अनुशासन है जो उनकी लिखी इस किताब के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जीवन में कोई सफलता अनुशासन के बगैर मिल ही नहीं सकती। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो आप बेटा निश्चित मानना कि आपको कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधाएं जरूर दिखेंगी। तो चलिए आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है यशस्वी लोगों से भेंट। अगस्त 1983 के अंत में नई दिल्ली में आयोजित हिमालय माउंटेनियरिंग एंड टूरिज्म मीट में मुझे निमंत्रित किया गया। इनमें 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अधिकांश पर्वतारोहण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति की विभूतियां थीं। यद्यपि मुझे इतने अधिक यशस्वी लोगों की उपस्थिति में भय लग रहा था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अधिक प्रेरणा भी मिल रही थी। वास्तव में इन प्रतिष्ठित लोगों से उस समय मेरी भेंट केवल कभी कभी लौट कर आने वाली स्मित मुस्कान तक ही सीमित रही, जब तक कि मैं उस होटल के भीड़ भरे हॉल में एक व्यक्ति से धक्का खाकर अचानक टकरा नहीं गई। मैं दो महान व्यक्तियों से अनजान नहीं रह सकी, एक तो अनुश्रित शेरपा तेंजिंग नॉर्गे जो हिलेरी के साथ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, और दूसरी जापान की महिला जुनको ताबे जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाली पहली महिला हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब से ही तेंजिंग के प्रति आदर भाव रखती थी, लेकिन अब मैं इनके इतने समीप थी कि मेरे अंदर अपना परिचय देने का साहस नहीं था। तभी नेहरू संस्थान के डॉक्टर की पत्नी शेरी ने मुझे सामूहिक फोटोग्राफ में शामिल होने के लिए कहा, और मैंने स्वयं को तेंजिंग के साथ खड़े हुए पाया। हालांकि मैं एवरेस्ट के इस विजेता से बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी जुबान ही बंद हो गई, और एक क्षण के पश्चात ही तेंजिंग को उनके प्रशंसक दूर ले गए। इस मीटिंग के लगभग तुरंत बाद बद्रीनाथ से ऊपर माना पर्वत पर आयोजित एवरेस्ट 84 अभियान के लिए अंतिम चयन शिविर में मैं गई। शुरू शुरू में मुझे बुखार आ गया और मुझे बेस कैंप में ही रुकना पड़ा। मैं बहुत चिंतित थी कि यदि मैं ठीक नहीं हुई और चयन शिविर कोर्स को पूरा नहीं कर सकी तो एवरेस्ट दल के लिए मेरा विचार नहीं किया जाएगा, ये मेरे चिर प्रतीक्षित सपने का दुखद अंत होगा। भाग्यवश मैं जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और छूट गए प्रशिक्षण कोर्स को आसानी से पूरा करने में समर्थ हो गई। इस शिविर में ऊंचा चढ़ने की बजाय अभ्यास करने पर अधिक जोर दिया जा रहा था। फिर मैं भी लगभग 7,500 मीटर ऊंची माना चोटी पर चढ़ सकी, जो उस वक्त तक की सर्वाधिक रिकॉर्ड था। ये शिविर एवरेस्ट दल में प्रवेश पाने के लिए निर्णायक था, इसलिए प्रत्येक ने अपनी भरसक कोशिश की। बाकी सभी लोग अनुभवी पर्वतारोही थे, मैं ही उनमें अकेली नौसिखिया थी। फिर भी लगा कि मैंने तकनीकी चढ़ाई, शारीरिक क्षमता और ऊंचाई के अनुकूल अपने आप को ढालने में अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती थी कि अंतिम वरीयता सूची में मेरा क्या स्थान होगा, लेकिन फिर भी आरोही के रूप में मुझे अपने कौशल पर विश्वास था। जब शिविर समाप्त हुआ, प्रतिभागियों को अपना सामान सड़क के किनारे तक ले जाना था। अधिकांश प्रतिभागी शक्ति और स्फूर्ति युक्त लगे और अनेक अपना सामान लेकर नीचे सड़क की ओर तेजी से चल दिए। मैं सावधानी पूर्वक चल रही थी। मैंने अपनी धीमी परंतु संतुलित चाल कायम रखी। मेजर प्रेमचंद ने मुझे देखा और कहा, बचेंद्री, यही चाल है जो तुम्हें एवरेस्ट पर रखनी होगी। उनके उस कथन का क्या अर्थ था? क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि शिविर में मैंने अपना ग्रेड बनाया होगा? तो आज का ये अध्याय कैसा लगा आपको, है ना? सुन के आपको लगा होगा कि बचेंद्री पाल जी ने भी कौशल की बात कही। आपकी की हुई मेहनत, आपके लिए गए छोटे छोटे कदम किसी भी दिशा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और बच्चों, मैंने हमेशा सुना है कि आपके द्वारा की हुई मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, है ना? लेकिन इस शब्द को हम फिर आपके कानों तक लाना चाहते हैं, बर्बाद। और वो शब्द मैंने इसलिए दोबारा इस्तेमाल किया ताकि आप समझ सकें कि यदि आपने इन छुट्टियों का सदुपयोग नहीं किया तो वो दुरुपयोग में बदल जाएगा। दुरुपयोग यही होता है जब आप किसी भी अच्छे वक्त का इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते, है ना बच्चों? तो अगर इस वक्त आप घर में नाश्ता करते हुए मुझे सुन रहे हैं, अगर कुछ पीते हुए सुन रहे हैं, दूध पीते हुए सुन रहे हैं या कोई जूस पीते हुए सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे ज़रूर गौर करें कि ये जो छुट्टियां हैं इनका एक भी दिन खराब ना होने पाए, है ना? क्योंकि बच्चों, आप सोचिए इस वक्त कितनी अच्छी बात है कि हम सब डिजिटल दुनिया से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे बताया, क्योंकि मैं बाल सभा करती हूँ, आपसे हर सप्ताह मिलती हूँ, तो बच्चे मुझे बहुत सारी बातें ना बताते रहते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे पार्क में आके बताया कि दीदी, मैं बांसुरी क्लास पता है कैसे सीख रही हूँ? मैंने कहा, बताओ। ऑनलाइन सीख रही हूँ। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन बांसुरी सीख रही है। मैंने कहा, कभी सुनाइएगा। तो अगले दिन पता है वो बच्ची अपनी बांसुरी लेकर पार्क में आई और उसने बहुत सुंदर तरीके से, बच्चों, मुझे बांसुरी पर एक गाना गाकर सुनाया। पूरे सातों स्वर उसने लगाकर मुझे सुनाए। बच्चों, मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए, उसने मुझे कहा कि उसकी मम्मी ऑफिस जाती हैं, पापा भी ऑफिस जाते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उसे इन छुट्टियों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना था। तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे कुछ सीखना है। उसकी बांसुरी का क्लास जो था वो बहुत दूर था, कोई ले जाने वाला नहीं था, तो उसने ऑनलाइन क्लास शुरू की और अब देखिए वो अच्छी खासी बांसुरी बजाने लग गई है। ऐसे ही आप लोग भी सकारात्मक दिशा में छोटे छोटे से कदम बढ़ाइए, है ना? क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है बच्चों। किसी बच्चे को खेल पसंद होता है, किसी को पढ़ना, किसी को गाना, किसी को डांस। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही काम कीजिए, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं आप कुछ भी कीजिए लेकिन कोई ना कोई सकारात्मक काम ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये जो शौक होते हैं, ये जो हॉबी क्लासेस होती हैं बच्चों, ये लंबे समय तक आपको काम आती हैं। जब आप कभी बड़े हो जाते हैं तब आप रियलाइज़ करेंगे ये बात कि जब आप थकते हैं, जब आप थोड़े से भी अकेले होते हैं, तो जो कुछ भी आपने सीखा है वो दक्षता आपके भविष्य में काम आती है। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने बैठ जाते हैं, क्योंकि उस ड्राइंग बनाने से ना बच्चों, उनका स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है ड्राइंग। ऐसे ही कुछ लोग गाना गाने लग जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत देर तक अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। तो बच्चों, हमको ये नहीं पता कि किसका क्या शौक है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे बच्चे आज जब बाल सभा पूरी तरह से सुन लेंगे, उसके बाद अपनी मम्मी से, अपने पापा से ये जरूर कहेंगे कि हमें किसी न किसी गतिविधि में भाग जरूर लेना है, है ना। भले ही वो कोई भी गतिविधि हो, आपके आसपास बहुत सारे समर कैंप लगे होंगे, उस समर कैंप में आप ये देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं और बस फिर आप उसमें भाग लीजिए, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर आप देखेंगे कि दो महीने बाद, डेढ़ दो महीने बाद जब आपकी छुट्टियां खत्म होंगी, तो आप में कोई ना कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसी आदत जरूर आ चुकी होगी जो आप अच्छे बच्चे बन पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो जब आप डेली क्लास में जाएंगे तो आपको अनुशासन आएगा, हाँ, और अनुशासन से आप वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे और इसमें साथ साथ में आपको सीख जाएंगे तो क्या ही कहने। अब एक और महत्वपूर्ण बात पे मुझे आना है, वो ये कि छुट्टियाँ हमें ये भी सिखाती हैं कि हम समय के बीच में संतुलन कैसे बिठाएं। जैसे कुछ नया सीखें, थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा खेलें, है ना। मतलब कोई भी काम आपको ज़्यादा नहीं करना है, ना तो बहुत पूरे दिन खेलने लगना है, बहुत बच्चों गर्मी है, थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। एक और बात जो मुझे कहनी थी वो ये कि इस पूरी बात में जो एक चीज़ छुपी है, वो अपने लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाना सीखो। जैसे आपके यहाँ भी कई बार स्कूल में भी एक एक्टिविटी होती है कि बिना आग जलाए हुए, यानी कि बिना आग से दूरी पे आप क्या क्या खाने की चीज़ें बना सकते हो जिसमें आपको गैस ना जलानी पड़े, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने लिए फल, अगर आप सारे देखो कि आपके घर में क्या क्या फल हैं, उनको काटने में थोड़ी सी मम्मी की हेल्प लो और आप फलों की चाट बना सकते हो, है ना। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप भेलपूरी बना सकते हो। मज़े मज़े में आप बनाना भी सीख जाओगे और आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो हम बिना गैस जलाए अपने लिए शौक शौक में बना सकते हैं और खा सकते हैं। क्या पता कल आप में से ही कोई बच्चा बहुत अच्छा शेफ बन जाए, हाँ। तो कल भविष्य में क्या छुपा हुआ है बच्चों, किसी को नहीं पता, लेकिन पता हमको क्या है, सिर्फ इतनी सी बात कि हमें हर दिन अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी है, है ना। तो बच्चों, इतनी बातों के बाद अब आपको पता है ना कि मनीषा दीदी चलते चलते आपसे क्या कहती है। आपकी दीदी आपसे कहती है कि मैं आपके लिए धीमा सा संगीत प्ले कर रही हूँ और फिर आज की बाल सभा में हम कुछ संकल्प लेंगे। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ये जो संगीत मेरी आवाज के पीछे आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए और अब खुद से छोटे छोटे से प्रॉमिस कीजिए। पहला, हम जिंदगी में अनुशासन से रहेंगे। हम इन छुट्टियों में समय का सदुपयोग करें।

0: को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इन छुट्टियों में हम समय का संतुलन सीखेंगे, थोड़ा सा समय खेल कूद के लिए, थोड़ा सा समय कहानियां पढ़ने के लिए और थोड़ा सा समय घर में अपने बुजुर्गों के साथ प्यार से समय बिताएंगे। तो अब इन छोटे छोटे से संकल्पों के साथ और इस प्यारे से संगीत के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप सब जो बातें मैंने स्टूडियो में बैठकर आज आपसे कही हैं, उनमें से कुछ बातें तो जरूर मानेंगे, है ना? तो अब चलूं, अपना ख्याल रखिएगा, गर्मियां तेज पड़ रही हैं, अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। बाहर निकलें तो कुछ ओढ़ के पहन के निकलिए, पूरे बांह के कपड़े पहनिए। सूरज चाचू इस वक्त बहुत गुस्से में, गर्मी में है, तो उनसे थोड़ा सा खुद को बचा बचा कर, है ना? सुबह की बहुत अर्ली मॉर्निंग की अगर धूप है वो आप ले सकते हैं, बाकी आप घर के ज्यादा से ज्यादा अंदर रहें, ज्यादा खुद को धूप में बाहर ना निकलने दें, है ना बच्चों? और हाँ, पानी खूब सारा पिए, खूब सारा, जितने ज्यादा हो सके फल खाएं, हाँ, ठंडी ठंडी चीजें खाएं, लेकिन किसी भी चीज के लिए मम्मी पापा से जिद ना करें, है ना? तो अब बच्चों चलती हूँ। बाल सभा में आज हमने गर्मियों की छुट्टियों के सदुपयोग पर बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं जब अगली बार आपसे मिलने आऊंगी और मेरे साथ जब कोई बच्चा यहाँ पर आएगा, तो आज हमने क्या क्या बातें की हैं इस पर भी बात करेंगे। देखें तो हमारे बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम में क्या याद रह जाता है और वो क्या अपनाते हैं, वरना पता चला कि मनीषा दीदी बोल रही है, बच्चे सुन रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, है ना? तो अगली बार मैं जरूर पूछूंगी आपसे कि आप अपने गर्मियों की छुट्टियों का इस्तेमाल, जो सदुपयोग की हम बात कर रहे हैं, वो करना शुरू किया या नहीं। तो चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए चलने की। आपसे फिर अगले बाल सभा में मुलाकात होगी बच्चों, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानी, नई कविताओं के साथ और आपके नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ भी। अभी चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज विषय था गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ थी मैं, आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय था गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजितियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के

0: संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था। पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और कानून। इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और कानून विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव और इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी।
1: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी, तो आइए आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
2: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
1: जी।
2: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ट्यूशन के बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा।

0: सुजल सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
0: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है। हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर है।
1: एक आम नागरिक की तरह अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
0: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि वो सीधी सी बात है जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
1: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
0: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
1: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
1: जी,
0: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
1: जी,
0: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए, पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटर जनरेशनल इक्विटी का, इंटर जनरेशनल इक्विटी
1: जी।
0: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं।
0: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, सीआरजेड नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है।
1: जी, आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
0: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेसा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देख कर ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहाँ पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं, यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
1: जी।
0: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
1: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
0: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
1: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्वजिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
0: एकदम सही बात,
1: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
0: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
1: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
0: एकदम सही।
1: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
0: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं। और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें। ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
0: एकदम।
1: अगर
0: एकदम।
1: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दाव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
0: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें, स्वयं लिखे और भेजे।
1: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
0: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
1: जी।
0: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ के पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
1: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्ट्री था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
0: जरूर
1: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
0: आपका भी धन्यवाद और आभार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, जिसमें आज का विषय था पर्यावरण संरक्षण और कानून। जानकारी दे रहे थे पर्यावरण संरक्षण और कानून विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव, और इनसे बातचीत कर रही थी मनीषा चतुर्वेदी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रकृति की पुकार कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डी सूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सेंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डी सूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही डी सूसा ने नाव पर कदम रखा, बहादुर ने अपने आदमियों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जवाबी कार्यवाही में आसपास के नाव से पुर्तगाली सैनिकों ने सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी, जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगा।
1: पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। आज हम इस कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही हैं पूर्वा खले।
0: हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सिलसिला चल रहा है भारतीय सेना के इतिहास को जानने का, उसे समझने का, और हम इस दौरान तारीख के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो भारतीय सेना के लिए स्वर्णिम अक्षरों से सजे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम की इन कड़ियों में हम सुन रहे हैं भारतीय सेना के तीनों अंगों के उस पराक्रम और शौर्य और साथ ही समन्वय की चर्चा जिसने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने भारतीय वायुसेना के इस युद्ध में योगदान की चर्चा की थी। चलिए इसे ही आज आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में।
3: जय हिंद पूर्वा जी एंड जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था
2: जी
3: NNF के ऑपरेशंस का।
2: हाँ जी।
3: और जहां तक मुझे याद है, हम लास्ट में जिक्र कर रहे थे स्पेशल मिशंस का जो उन्होंने कैरी आउट किए थे, जिसमें से कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था गवर्नमेंट हाउस ढाका पे
2: जी
3: इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था, वो भी उस वक्त जब गवर्नर साहब सिविल लीडर्स से मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग प्रोग्रेस में थी। और इस अटैक ने जो है ना केवल मतलब मटेरियली मतलब जो है गवर्नर हाउस को डिस्ट्रॉय किया, उनका मोराल इतना जबरदस्त ढंग से डिस्ट्रॉय किया था, मतलब खत्म किया था कि इमीडिएटली जो है मलिक साहब जो थे गवर्नर साहब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था।
2: गवर्नर हाउस पर जो बम्बार्डिंग हुई थी उसके पहले चेतावनी भी जारी की गई थी ताकि वो उसे खाली कर दें।
3: Exactly.
2: किसी तरह का मतलब नुकसान ना हो,
3: नुकसान ना हो
2: जी,
3: ये भी कहा गया था। और ये भी मतलब ध्यान रखा गया था कि अगर आप देखें
2: जी,
3: वो चाहते तो इन सबको मार सकते
2: जी, बिल्कुल।
3: तो वो इवन बम्बार्डिंग भी थी, ऑल्दो इट वॉज वेरी एक्यूरेट, लेकिन एक तरह से जो है मतलब
2: हमारे सेना के मानवीय पक्ष को रखती है ना।
3: Exactly, ह्यूमैनिटी वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन वाली बात है वो रहा था। तो इसी तरह से IAF जो इंडियन एयरफोर्स है, उस दौरान उन्होंने जो है 71 में जब ऑपरेशंस कर रहे थे तो नेवी को भी सपोर्ट में उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, जिसको मैरिटाइम ऑपरेशंस कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जिसमें एक सबसे बड़ा होता है लाइक जैसे समुद्र में जो है आप देखते हैं बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसके लिए रिकॉनिसेंस मतलब जो है एक तरह से विजिलेंस जो है करना, और जो इन्फॉर्मेशन है जो अपने दुश्मन के जहाज अगर उन्हें दिखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, स्पीड ज्यादा है,
2: ऊपर से देख रहे
3: हैं, तो वो करना। और जब नेवल शिप्स जाती हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना, हम ये अभी आगे भी जिक्र करेंगे। तो ये ऑपरेशंस भी उन्होंने कैरी आउट किए थे। और इवन क्या हुआ था कि जब नेवी ने कराची एयरपोर्ट पे अटैक किया था, उस दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने उनको सपोर्ट में जो है वहां का जो कराची का एयरफील्ड था मसरूर, उस पे अटैक करके वहां पे जो एयरक्राफ्ट थे 6-7 एयरक्राफ्ट से जो उन्होंने बर्बाद कर दिए थे।
2: अच्छा।
3: तो IAF एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल इस पूरे ऑपरेशंस में
2: जी।
3: और इसके अलावा इवन जब बे ऑफ बंगाल में भी इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही थी, उस दौरान भी उन्होंने मैरिटाइम ऑपरेशंस जो है उनके साथ किए थे, जो भी काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे। एंड इसमें इवन जब चित्तागोंग पे अटैक कर रहे थे तो पाक एयरफोर्स को ऑलमोस्ट जो है इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी तरह से वहां लगने नहीं दिया था। इंडियन एयरफोर्स हैज अ टोटल डोमिनेशन ऑफ
2: बांग्लादेश की ओर,
3: या जिसके कारण जो है इवन नेवी को जो है काफी असिस्टेंस मिली थी अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने में। तो अभी हम एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स में आते हैं, तो हमने ये देखा कि मतलब एक तरह से जो विक्ट्री थी उसमें जो इंडियन एयरफोर्स का योगदान था वो काफी सराहनीय था।
2: सर, बिल्कुल,
3: बहुत ही ज्यादा सराहनीय
2: दोनों ही मोर्चों पे सर, चाहे पश्चिम हो या पूर्व हो।
3: एंड इसमें अगर आप देखें तो बहुत ब्रेवरी, मतलब दे रियली फॉट इन अ वेरी ब्रेव मैनर, ठीक है, एंड बहुत आउटस्टैंडिंग लीडरशिप थी, एंड राइटली दे वर ऑनर्ड ऑल्सो फॉर द सेम थिंग। इस ऑपरेशन में 17 ऑपरेशन में IAF को एक परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र और 100 से ज्यादा वीर चक्र और भी काफी सारे जो है अवार्ड्स मेडल्स मिले थे, जो है जो कि बिल्कुल सही है।
2: जी बिल्कुल,
3: क्योंकि वो जिस तरह से बहादुरी से करीब से उन्होंने काम किया उसको वो डिजर्व करते थे।
2: बिल्कुल,
3: एयरफोर्स की जो विजय गाथा है इसको हम कम्प्लीट नहीं कर सकते हैं जबकि हम इंडियन एयरफोर्स के शूरवीर परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर नरबलजीत सिंह सिक्कौल जी का जिक्र ना करें।
2: जी बिल्कुल सर,
3: इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं एंड फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्कौल जी थे। 71 ऑपरेशंस के दौरान श्रीनगर में पोस्टेड थे, ऑपरेटिनस ड्यूटी पे थे उस समय जब 14 दिसंबर को श्रीनगर एयरफील्ड पे जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया। तो 6 सैबरजेट्स थे जिन्होंने अचानक हमला किया था एंड उस समय जो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्कौल जो है टेक ऑफ कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद जैसे ही मतलब उन्होंने टेक ऑफ किया है सडनली ही फाइंड कि उनके ऊपर 6 जो है दुश्मन के जहाज है, तो 6:1 के रेशो में आप सोचिए। बट दिस ब्रेव ऑफिसर अपनी जान की बाजी लगाते हुए उन्होंने जो है उनसे मोर्चा से लिया और 2 सैबरजेट को उन्होंने उसी समय जो है गिराया और कहते हैं कि उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे, मोर्चा संभाले रहे, एक एक से टक्कर लेते रहे। एंड ये कहते हैं कि जब ये लड़ाई जो हुई थी मतलब एयर में जो चल रहा था इट वॉज ऑलमोस्ट अ ट्री हाइट, मतलब उस लेवल पे इतनी स्पीड पे मतलब सब कुछ करना,
2: इन्हें पेड़ों के स्तर तक आ गए थे,
3: स्तर तक आते हुए लड़ रहे हैं, हवाई जहाज लड़ रहे हैं। एंड निर्मलजीत सिंह सिक्कौल साहब जो थे वो मतलब एक हिसाब से आप देखिए शेयर वेट के कारण मतलब जो है 2 गिराने के बाद भी 4:1 में जो है लड़ रहे हैं और फिर भी वो पीछे नहीं हटे एंड लड़ते रहे लास्ट तक जो है। एंड इट वॉज जस्ट बिकॉज की 4:1 के रेशो होने के कारण जो है दुश्मन उनके ऊपर जो है उनको गिरा सका, मार सका, हावी हो गया। लेकिन लड़ते लड़ते भी उन्होंने जो है ये इंश्योर कर दिया क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जो दुश्मन के साइबर जेट्स थे वो बिना किसी तरह का डैमेज पहुंचाए श्रीनगर को या एयरफील्ड को वापस चले गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ इन दिस ऑपरेशन, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन अपना जो उनका टास्क था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर की रक्षा करना, श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा करना, उसमें वो पूर्णतः सफल रहे जो है। विदाउट एनी डाउट ये जो हीरो हैं हमारे, ठीक है, वो आज भी हमें जो है प्रेरणा स्रोत हैं हमारे जो है। एंड इनको बिल्कुल उनकी गैलेंट्री, उनकी बहादुरी और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी और सबसे बड़ी बात सर्विस टू द नेशन बिफोर सेल्फ, उसके लिए उनको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से
2: सम्मानित किया गया था।
3: एंड नो डाउट उसके बाद जो है एयरफोर्स का अपना स्टैंडर्ड जो है एक मतलब आप सोचिए कितना मतलब हाई स्टैंडर्ड उन्होंने दिया। वी सल्यूट टू दिस ब्रेव ऑफिसर हु टिल डेट एक्चुअली मोटिवेट्स अस।
2: बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर ये जहां तक मुझे जानकारी है सर एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है वायुसेना की ओर से आज भी।
3: जी आज भी जो है इंडियन एयरफोर्स में वो इकलौते परमवीर चक्र विजेता है। एंड वी वंस अगेन सैल्यूट देम एंड क्लोज दिस एयरफोर्स थिंग एंड नाउ वी मूव ऑन टू इंडियन नेवी।
2: वाकई में सर भारतीय सेना की शौर्य गाथा अधूरी है जब तक कि हम निर्मलजीत सिंह सिक्कौल को याद ना करें।
3: या एयरफोर्स के जिक्र उनका एयरफोर्स की विजय गाथा का जो है
2: उनके बिना अधूरा
3: है। उनका बिना अधूरा है।
2: तो सर ये तो हुए अभी तक हमने जो चर्चा की वो भारतीय वायुसेना के योगदान की हमने चर्चा की सन 1971 के युद्ध में। अब बात आती है, जैसा कि आपने पहले ही कहा था कि अब नौसेना का मैं जिक्र करूंगा, तो मैं यही जानना चाहती हूं कि नौसेना का जो योगदान है वो हमारे इस युद्ध में, जिसमें हमने इतनी बड़ी विजय गाथा लिखी है और उसके बाद ही हमारे देश में एक गजब का कॉन्फिडेंस हमारे आत्मरक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए एक उत्पन्न हुआ है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर।
3: हमारी जो कंट्री है
2: जी,
3: उसकी बनावट है, वी आर ए पेनिनसुला
2: जी, उपमहाद्वीप
3: है ना, उपमहाद्वीप जिसमें तीन तरफ जो है पानी है, समुद्र है
2: जी।
3: तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है, साउथ में जो है इंडियन ओशन आता है, और वेस्ट में जो है अरेबियन सी आता है। तो ये तीनों जो सी हैं, और प्राचीन काल से अगर आप देखें तो व्यापार में समुद्र का सबसे बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले जो मूवमेंट जो है, जितना व्यापार, और आज भी जो है जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत मायने रखते हैं, वो बैकबोन है हमारे जो हमारी कंट्री की, किसी कंट्री की इकोनॉमी के जो है बैकबोन होते हैं। और उसके ये जो हमारा अरेबियन सी है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट है, अगर आप देखें इवन ईस्टर्न कोस्ट है, इस पे ही हमारे सारे पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज बेस्ड
2: बने,
3: बने हुए हैं, एंड आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। तो ये जो सी है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल, और इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वो नेवी की होती है। तो नेवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द सी कोस्ट, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसको रक्षा करना, एंड इंडिया में तो बहुत, अब दोनों तरफ अगर आप देखें, अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं
2: जी, बिल्कुल
3: ठीक है, इसी तरह से बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो उनकी भी सुरक्षा जो है वो पूरी की पूरी नेवी की जिम्मेवारी है। तो 71 में अगर आप देखें, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो मेन कनेक्शन था मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
2: रसद
3: के लिए, हर चीज के लिए सी के थ्रू था,
2: दो भाग में बटा हुआ था,
3: दो भाग में बटा हुआ था, बाय एयर इतना एफर्ट्स नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, हाँ एक्सपेंसिव भी था, और बाय लैंड तो सवाल ही नहीं उठता, तो सी वाज द ओनली थिंग, ठीक है। तो डोमिनेशन ऑफ सी वाज ए मेजर फैक्टर फॉर बोथ द कंट्रीज। पाकिस्तान को भी मालूम था अगर ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है उसके पास, तो वो ईस्ट पाकिस्तान को वैसे खो देगा, ठीक है। और इंडिया को ये था कि भाई हम अगर डोमिनेट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते,
2: नहीं कर सकते
3: है ना, तो इट वाज अ मेजर मेजर थिंग फॉर बोथ दिखाई जाए तो
2: जी।
3: तो 71 के टाइम पे इंडियन नेवी जो थी वाज रेडी फॉर द वॉर, क्योंकि देखिए इंडिकेशंस तो इस वॉर के में जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, 6 महीने पहले से ही थे, तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। उन्होंने अपना जो प्लान था इंडियन नेवी का, इट वॉज बेस्ड कि भाई डिटेल अप्रिसिएशन ऑफ कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, इनके रिसोर्सेज क्या हैं, तो उसको देखते हुए जो है उन्होंने प्लान अपना जो है फाइनल किया था
2: जी।
3: तो अगर हम इसको डिटेल में देखना चाहें तो हम मतलब इसको दोनों वेस्टर्न फ्लीट फ्रंट को और ईस्टर्न फ्रंट में डिवाइड करके एक बार इसका हम जिक्र कर सकते हैं, है ना। अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो वेस्टर्न फ्रंट में जब हम अपना ऑपरेशन प्लान करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई दुश्मन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसके पास क्या रिसोर्सेस हैं। तो अगर हम पाकिस्तान नेवी के बारे में देखें तो भाई उनका सबसे बड़ा उनका वो था मुद्दा था कि भाई कराची जो है उनका
2: नेवल बेस है,
3: सबसे बड़ा बंदरगाह, उसको उनको सेफ करके रखना है।
2: सर उनका नेवी का मुख्यालय भी शायद कराची है,
3: हाँ, तो उसको जो है डिफेंड करना है। उसके अलावा जो है अब उनका ये था कि हम वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, तो जो हमारा सौराष्ट्र से लेके नीचे तक जो कोस्टल लाइन है उस पे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, उस पे जो हमारे पोर्ट्स हैं, हमारे नेवल बेसिस हैं, उस पे वो अटैक करेंगे। और अरेबियन सी में जो है इंडियंस का जो मूवमेंट होगा, इंडियन मर्चेंट शिप्स का, नेवी का, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आइलैंड्स हैं इनके ऊपर जो है अटैक करके उनके ऊपर कब्जा करना कोशिश करना, तो इन सबको देखते हुए देन इंडियन नेवी प्लान्ड ए मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशन। उनका ये था कि कुछ भी हो जाए हमें अरेबियन सी पे डोमिनेशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें पता था कि हमको अगर कराची पे को अटैक कर सकते हैं तो मतलब वी विल बी एबल टू अचीव अवर एम। सो नेवी प्लान्ड ए मेजर अटैक ऑन द कराची पोर्ट, ठीक है। इट वाज नेम्ड एज ऑफ ट्राइडेंट, ठीक है। एंड दिस वॉज लॉन्च ऑन 4th and 5th of December, मतलब 3rd को जैसे वॉर शुरू हुई है ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे, मतलब दे लॉन्च डेट,
4: नेवी बिल्कुल
3: तैयार थी बिल्कुल,
4: यदि हमला हुआ तो हम पहले आगे आ जाएंगे,
3: एग्जैक्टली ऑफेंसिव रोल में थी
4: जी.
3: तो फर्स्ट अटैक वॉज लॉन्च, ठीक है, और इट वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल, जिसमें कि वहाँ पे जो है इंडियन नेवी वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय 2 warships, ठीक है, और जो नेवल बेस था कराची का उसमें उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया, ठीक है. अब जैसे अभी जिक्र किया था 3rd को वॉर शुरू हुआ, 3rd-4th को
4: जी.
3: तो 30 घंटे के अंदर जैसे ही नेवी ने अटैक किया, इट एक्चुअली स्टंट पाक नेवी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि इतना जल्दी इतना मेजर अटैक आएगा, है ना. एंड जब ऐसा होता है तो शॉक
4: जी.
3: जो था इट एक्चुअली डीमोरलाइज्ड द पाक नेवी
4: जी, तैयार नहीं थे वो,
3: नहीं थे
4: जी,
3: ये सोचा नहीं है. एंड इसके इमीडिएटली बाद जो है 8th to 9th December को सेकंड अटैक हुआ.
4: अच्छा,
3: ठीक है. अब इस अटैक में जो है अगेन पाकिस्तान सफर्ड, काफी उनका नुकसान हुआ. तो उसमें क्या हुआ कि अगेन दे सफर्ड लॉट ऑफ कैजुअल्टीज, ठीक है, उनके मर्चेंट शिप्स थे, सबसे बड़ी तो उनका जो ऑयल इंस्टॉलेशन था वहां पे कायामारी में, उस पे काफी नुकसान हुआ. और अगर आपको याद हो, हमने जिक्र किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने भी सपोर्ट में जो है उस समय इन्हीं लोकेशन पे बमबारी करी थी, तो अभी वो आग बुझी नहीं थी, ऑयल इंस्टॉलेशन की नेवी ने भी कर दिया
4: जी.
3: तो इट लेड टू ए टोटल डिस्ट्रक्शन. तो ये जो था अटैक था, इसके बाद क्या हुआ कि जो अरेबियन सी में इंडियन नेवी हैड ए टोटल डोमिनेशन और दे वर सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग द पाकिस्तान कोस्ट एंड स्पेशली उनको उन्होंने जो है कराची से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था. और यहाँ तक हुआ था कि जो कराची पोर्ट में मर्चेंट शिप्स थी जो न्यूट्रल कंट्रीज की, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से इजाजत मांगनी शुरू करी छाने के लिए,
4: सारे रास्ते उनके बंद थे, जो समुद्री रास्ते थे,
3: एग्जैक्टली उनको ये समझ में आया कि अभी जो है
4: भारतीय नियंत्रण में,
3: ये भारत के नियंत्रण में है, तो उन्होंने भारत से जो है परमिशन मांगनी शुरू कर दी. तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना डोमिनेशन था. एंड पाकिस्तान के जो मर्चेंट शिप्स थे उसको तो उन्होंने बिल्कुल ही वहां से मतलब जो हिलने नहीं दिया जो है. और उसके बाद इस पर जो इंडियन शिप्स थे, मर्चेंट शिप्स थे, वो जो है बेधड़क अपना ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा. तो ये होता है जो नेवी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य था, जो एम था, उसको एक तरह से उन्होंने पूर्णतः पूर्ण रूप से उसको प्राप्त किया.
4: पाकिस्तान मतलब इस चीज की आशा ही नहीं कर सकता था कि ये रूप भी नेवी अपना दिखा सकती है, भारतीय नेवी.
3: एग्जैक्टली. इससे पहले ये मतलब जो ऑपरेशंस जितने भी हमने देखे हैं वो ज्यादातर ग्राउंड
4: हवाई पे
3: और हवाई और थल सेना के ही देखे थे. तो नेवी वाज द फर्स्ट टाइम मतलब जिसमें ऑल्दो नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन 47-48 में भी सहयोग रहा उन्होंने, जूनागढ़ ऑपरेशन में भी दिया था, ठीक है, गोवा के ऑपरेशन में भी किया था, जब दमन एंड दीव का हुआ था तब भी किया था, लेकिन ये ऑफ कोर्स दिस वाज अ मेजर मेजर पार्टिसिपेशन, ठीक है, और दे डिड वेरी वेल इन दिस. तो अब क्या हुआ उसके बाद, जैसे कि हमें ये शक था कि पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स यूज करके हमारे जो कोस्टल लाइन है सौराष्ट्र से लेके नीचे तक इसमें कहीं ना कहीं जो है अटैक कर सकता है, हमारे जो शिप्स खड़े हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरा क्या होता है, जो पोर्ट्स होते हैं अगर उसके एंट्रेंस जो रहती है, जैसे कोची का पोर्ट है तो उसमें एक चैनल होता है, चैनल है जिसमें जिसके निकलने के बाद वो मेन आप सी में जाते हो तो अगर आप उसको ब्लॉक कर दें वो यूजलेस हो जाता है.
4: अच्छा.
3: तो ये डर ये रहता था कि उसको माइनिंग कर दी जाएगी तो उससे जो है इससे नुकसान हो सकता है. तो इन सब के लिए जो है इंडियन नेवी सतर्क थी. तो वो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था फाल्कन, ठीक है, जिसमें कि इन सबमरीन्स को ढूंढना एक काम था उनका. तो एक INS कुकरी एंड INS कृपान, इंडियन नेवल शिप कुकरी एंड INS इंडियन नेवल शिप कृपान, इसमें जो है दमन एंड दीव जो उसके सौराष्ट्र में ये ऑपरेशन पे थे. तो 9th और 10th को जो है INS कुकरी टॉर्पिडोड, ठीक है, एंड आप समझते टॉर्पिडो मतलब उसके ऊपर हमला हुआ सबमरीन से.
4: एंड पानी के नीचे,
3: हाँ पानी के नीचे से, एंड INS Kukri
4: जी डूब
3: गया, सिंक हो गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली अलोंग विद दैट ऑलमोस्ट 18 ऑफिसर्स थे उनके और 176 सेलर्स थे साथ में, उनके जो CEO थे कैप्टन मुल्ला
4: जी,
3: सभी लोग जो हैं डूबे। अब जैसे ये हुआ, जैसे ही शिप सिंक हुआ
4: जी,
3: तो इमिडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किया, एंड एक बहुत डेडिकेटेड विगर के साथ जो है जो सबमरीन थी जिसने किया था उसको ढूंढने का हंट लॉन्च किया गया, मतलब उसके लिए नेवी ने अपने काफी पूरे ऑलमोस्ट रिसोर्सेस लगाए जो है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेस नहीं हुआ था जो सबमरीन है, एंड दिस वाज अ मेजर लॉस व्हिच नेवी सफर्ड ऑफ INS Kukri, बट दे वर एबल टू सेव ऑलमोस्ट 6 ऑफिसर्स एंड 61 सेलर्स, उनको बचा सके थे, बाकी को नहीं बचा पाए थे। तो इसके बावजूद, मतलब INS Kukri के लॉस के बावजूद जो वेस्टर्न फ्लीट थी, जैसे हमने अभी बताया, उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि सुपरमेसी जो है अरेबियन सी पे एस्टैब्लिश करना, वो उन्होंने कायम करी, लक्षद्वीप आइलैंड्स की सुरक्षा, जो हमारे पोर्ट्स की सुरक्षा, जो है हमारे कोस्टल लाइन की सुरक्षा, इस पे हर काम में वो सफल रहे। तो वेस्टर्न फ्लीट को इस पूरे ऑपरेशन में 3 महावीर चक्र मिले थे और भी काफी सारे अवार्ड्स उसके अलावा मिले थे, एंड कैप्टन मुला जो कि कैप्टन थे INS Kukri के, उनको पोस्टमेसली जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो है। तो ये मतलब देखा जाए तो एक तरह से शॉर्ट में अरेबियन सी में वेस्टर्न फ्लीट का जो ऑपरेशन था उसका हमने जिक्र किया। अभी अगर हम देखें ईस्टर्न फ्लीट की बात करें,
4: हाँ जी।
3: अब ईस्टर्न फ्लीट जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ थी, थी वाइजैक में, यहाँ अगेन मेन ऑपरेशन था। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि हमेशा अरेबियन सी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखा जाए तो उस साइड को ज्यादा
4: असुरक्षित महसूस किया जाता है,
3: और वहाँ पे इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो वो ज्यादा एक्टिव जोन है। पाकिस्तान जो है उसका भी मेजर जो है पोर्ट कराची माना गया था और है भी आज भी, तो इस कारण से वो ज्यादा एक्टिव रहे। तो ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो उस समय जो है जो ईस्टर्न फ्लीट थी, नेवल कमांड थी, उसके लिए जो है ऑलमोस्ट उनके पास 3000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन थी, मतलब और जिसमें कि कितने सारे मेजर पोर्ट्स आते हैं, कलकत्ता है, चेन्नई है, वाइजैक है, ठीक है, टूटीकोरिन है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि अपने आप में 800 किलोमीटर फैले हुए हैं। तो ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में था। तो अब यहाँ पे जो है ईस्ट पाकिस्तान था जिसमें कि जिसके लिए सारी लड़ाई हो रही थी,
4: जी बिल्कुल।
3: तो ईस्टर्न फ्लीट जो थी दे हैड द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इसको ब्लॉक करना है, बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करना है, और उसके अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जितने पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के ऊपर जितना भी नेवी का आर्मी का जो रिसोर्सेस हैं, इवन एयरफोर्स के रिसोर्सेस पाकिस्तान के, उनको नष्ट करना, ताकि इससे हमें जो है ऑपरेशंस में मदद मिले। तो ये उनका मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए जो प्राइड ऑफ नेवी है जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, INS विक्रांत को यहाँ डिप्लॉय किया गया था।
4: अच्छा।
3: तो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसकी लंबाई है, मतलब ऑलमोस्ट 210 मीटर की लंबाई है,
4: क्या बात है।
3: हाँ जी। और उसमें उसके अपने 25 एयरक्राफ्ट होते हैं, और उसमें मतलब आप ये देखिए कि कितना बड़ा वो है कि उसके पास 15 जो है 40 mm की जो है एंटीक्राफ्ट गन्स थी,
4: अच्छा,
3: ताकि किसी तरह से ऊपर से अटैक ना हो
4: जी।
3: एंड आप एक अंदाजा लगाइए कितनी स्ट्रेंथ होगी उसके ऊपर, उस एयरक्राफ्ट में जो है ऑलमोस्ट 1800 लोग थे।
4: क्या बात है,
3: 1809 सैनिक, मतलब 182 ऑफिसर्स होते थे, एंड 1650 से ऊपर जो है सेलर्स होते थे।
4: सेवन स्टोरी है, चलता फिरता शहर है वो।
3: हाँ, आप कभी जाएं तो मुंबई में वहाँ पे म्यूजियम है तो आप उसको देख सकते हैं, एंड इट्स रियली, आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी फोर्स थी। तो अब ये वहां पे जो है INS विक्रांत डिप्लॉयड था, ठीक है, एंड जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि

0: और ये सारे जो एयरक्राफ्ट INS पे थे, विक्रांत पे थे, ये जाके इनके कारण जो है ये अचीव हो पाया है। और इसमें जो है काफी जो है नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा, उनकी जो कोस्टल बैटरीज थी, हैंगर्स थे, रनवेज थे, फैक्ट्रीज, जेटीज, सब जो है डिस्ट्रॉय हुए।
1: यानी पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान से संपर्क, पूरी तरह से समुद्री संपर्क जो था वो पूरा खत्म
0: हाँ,
1: कर
0: वो
1: दिया।
0: तो खत्म था
1: जी।
0: और उसके अलावा देखा जाए तो इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन है। इसमें एक और जो बहुत बड़ी सफलता मिली थी इंडियन नेवी को, वो थी पाकिस्तान नेवल के एक सबमरीन थी गाजी
1: जी,
0: जो कि उस समय जो है काफी मतलब एडवांस्ड सबमरीन मानी जाती थी। और वो एक ही सबमरीन थी जिसको बे ऑफ बंगाल में उन्होंने डिप्लॉय किया था।
1: अच्छा।
0: और उसका टास्क था INS विक्रांत को डुबाना।
1: अच्छा।
0: और साथ में
1: इस युद्ध के दौरान,
0: इस युद्ध के दौरान
1: जी,
0: और जो बोट्स की अप्रोचेस जो थी उसको माइंस लगाना जो है। 3-4 दिसंबर को जो है रात को इंडियन नेवी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी, जिसमें कि जो है ये PNS गाजी जो है
1: जी,
0: ये सिंक हुआ था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इसको उन्होंने जो है डुबाया था जो है एंड नष्ट किया था। एंड इट वाज अ मेजर मेजर ब्लो टू पाकिस्तान नेवी एंड अ मेजर विक्ट्री फॉर द इंडियन नेवी फोर्सेस जो है।
1: सर, एक प्रश्न मन में ये आ रहा है कि उनके पास गाजी पनडुब्बी थी, क्या हमारे पास भी तब उस समय पनडुब्बी वाला स्टेटस था?
0: हाँ हाँ, हमारे पास भी थी। या या, वी आल्सो हैड सबमरीन्स एट दैट टाइम एंड दीज वर डिप्लॉयड, डिप्लॉय करा हुआ था वो, अपना अपना जो है काम जो था उनका वो कर रहे थे। अगेन अगर आप देखें जो इंडियन नेवी के ऑपरेशंस थे, लाइक वेस्टर्न फ्लीट ने किया था, वैसे ईस्टर्न फ्लीट ने भी जो है एब्सोल्यूट डोमिनेशन बे ऑफ बंगाल के एरिया में एस्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये नेवी ने एक एम्फीबियस ऑपरेशन भी कैरी आउट किया था।
1: अच्छा।
0: एम्फीबियस ऑपरेशन क्या होता है कि आर्मी जो होती है, आर्मी के जो ट्रुप्स होते हैं वो नेवी शिप में जो है जाते हैं, और जो बीच होते हैं मतलब जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है वहां उनको वो लैंड कराते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो शिप्स जाते हैं तो शिप्स एक तो मूवमेंट का वो रहता है, मूव के लिए जो यूज होते हैं, उसके अलावा जो है आर्टी सपोर्ट होता है नेवल शिप का, क्योंकि उनमें गन्स होती हैं, तो वो उसके सहारे जो है फिर फोर्सेस लैंड होती है। तो ये जो है एक ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था जिसमें कि इंडियन आर्मी ट्रुप्स जो है कोक्स बाजार में, कोक्स बाजार एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे लैंड किया था।
1: अच्छा।
0: उसका रीजन ये था कि जो पाक फोर्सेस थी उनको म्यांमार की तरफ जाने से रोकना, उनका एस्केप रूट को खत्म करना था
1: जी।
0: तो इस ऑपरेशन में नेवी के एम्फीबियस ऑपरेशन में ऑलमोस्ट 1200 लोग जो थे आर्मी के ब्रिगेड जो थी इक्विपमेंट आर्म्स एमिनेशन के साथ उन्होंने सक्सेसफुली लैंड कराया था। ये देखा जाए तो एक तरह से सेकेंड एम्फीबियस ऑपरेशन था नेवी का आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले जब जूनागढ़ के अगेंस्ट जब कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे तब भी जो है इट हेल्प्ड एम्फीबियस ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था। तो सेकेंड ये उन्होंने कैरी किया था जो है। तो अगर आप देखें तो अगेन 14 डेज में ईस्टर्न फ्लीट ने भी जो मैरिटाइम ऑपरेशन जितने होते हैं जिस तरह के होते हैं सारे कैरी आउट करे एंड उन्होंने भी जो है बहुत ही यूनिक अचीवमेंट रहा उनका जिसमें कि उन्होंने ये पूरा डोमिनेशन किया
1: जी।
0: और दे वर एबल टू डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट ईस्टर्न फ्लीट में
1: जी।
0: उन्होंने पाकिस्तान की 14 ships डिस्ट्रॉय किए थे।
1: क्या बात है।
0: 6 gunboats थी और ये ब्लॉकेट के कारण जो है 13 से ज्यादा मर्चेंट शिप्स जो है उन्होंने कैप्चर किए थे।
1: अच्छा।
0: और PNS गाजी तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ही था जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं। इस बहादुरी के लिए जो है इनकी डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क जो है एंड अ वेरी एबल लीडरशिप, अगेन दे वर अवार्डेड विद 5 महावीर चक्रास एंड बहुत सारे और भी अवार्ड्स मिले थे जो है। अगर हम ओवरऑल देखें नेवल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जो 71 ऑपरेशंस में नेवी डिड एन एक्सीलेंट जॉब
1: जी, बिल्कुल।
0: दोनों जो है सी कोस्ट के ऊपर डोमिनेशन करना, दोनों पे जो है अपना जो है वर्चस्व
1: जी बिल्कुल
0: कायम करके रखना
1: जी।
0: और इसके कारण जो है बांग्लादेश का जो लिबरेशन मतलब हुआ
1: जी,
0: उसमें मतलब बहुत मदद मिली थी, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने ब्लॉकेड किया है बे ऑफ बंगाल में तो कोई आ नहीं सकता है
1: जी,
0: तो
1: रसद भी नहीं मिल रही है,
0: रसद भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इट इज एक्चुअली मतलब वी मस्ट से सो कि देखा जाए तो उन्होंने मतलब दे डिड अ ट्रेमेंडसली एक्सेलेंट जॉब जो है। अगर हम समराइज करें एक तरह से
1: जी,
0: तो पाकिस्तान नेवी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, काफी उनके जो शिप्स थे वो नष्ट हुए, ट्रोल क्राफ्ट जो है बर्बाद हुए, गनबोट्स को मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड दे लॉस्ट अराउंड 55 ऑफिसर्स एंड 430 सेलर्स पाकिस्तान। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इंडियन नेवी लॉस्ट 1 फ्रिगेट जो कि हमारा INS कुकरी था, और एक एयरक्राफ्ट, 20 ऑफिसर और ऑलमोस्ट 180 जवान शहीद हुए जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया देश के लिए, और एक तरह से इन लोगों की बहादुरी के कारण ही जो है फौज जो है इस विजय को हासिल कर पाई थी।
1: हम भारतीय सेना के ऐतिहासिक पलों को जी रहे हैं वापस, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तथ्यों को समेट कर लेके आते हैं और उनको इतने अच्छे से पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमें मतलब मेरे पास तो प्रश्न ही नहीं रहते पूछने के लिए उस तरह से आप इस कार्यक्रम को समेट देते हैं सर।
0: सो नाइस, एंड मेरा तो ये है कि हम इस जर्नी को जारी रखेंगे
1: जी, बिल्कुल सर,
0: है ना। और अभी जो मेन है इंडियन आर्मी के बारे में जो है जो आगे हम जिक्र करेंगे
1: जी, बिल्कुल। तो सर जैसे जल सेना के बारे में, भारतीय जल सेना के बारे में हमने कहा कि उसका तो आदर्श वाक्य है कि शम नो वरुणा, यानी हे जल देवता हमारे आप शुभ रहें, और ये वेदों की जो लाइन है वो हमेशा से ही हमारी जल सेना के लिए एक आदर्श वाक्य रही है और एक आशीर्वाद रही है, और ये समुद्री जो जल सेना है और हमारे लिए ऐसे ही आगे भी इसी तरह का हमारे देश के लिए इसी तरह का रोल निभाते रहे, यही आशा है। और यहीं हम वायुसेना की भी बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वायुशक्ति की बदौलत आप कोई भी लड़ाई जीतें या ना भी जीतें, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में आपकी हार जरूर निश्चित है।
0: एग्जैक्टली
1: तो कुछ ऐसी ही गौरवशाली भूमिका रही है हमारी भारतीय वायुसेना की भी और भारतीय जल सेना की भी इस युद्ध में। आखिरी में फिर सर एक बार आभार आपका कि आप आए और इस कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना।
3: हाय मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
5: भारतीय वायुसेना आकाश की विजेता।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: ओ दादू, ये क्या था? इतनी तेज आवाज और कितना तेज उड़ रहा था दादू। वो देखो ना, कितना छोटा दिख रहा है इतनी ऊपर, लेकिन आवाज अब भी कितनी तेज आ रही है।
2: वो कोई आम जहाज नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट था।
1: वायुसेना? दादू इसके बारे में बताइए ना, ये सेना युद्ध के समय किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है और कब कब काम करती है।
2: अरे अरे अरे रुचि बेटा, थोड़ा आराम से, एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा।
1: सॉरी दादू। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगी।
2: ये हुई ना बात, चलो अब बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज बात करते हैं वायुसेना पर। पहले मैं बेटा बैठ जाऊं कहीं?
1: हाँ दादू बिल्कुल।
2: हाँ तुम भी बैठो बिटिया।
1: हाँ दादू मैं बैठ गई।
2: हाँ अब पूछो, तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल हैं?
1: सवाल ये हैं दादाजी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वायुसेना क्या है।
2: बिटिया भारतीय वायुसेना सिर्फ विमान उड़ा

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आज हमने भारत पाकिस्तान युद्ध पर केंद्रित कार्यक्रम का तृतीय भाग सुना। और अब समय है कार्यक्रम देश के संस्थान का। इस कार्यक्रम में आज हम भारतीय वायुसेना पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: वाली फोर्स नहीं है।
2: अच्छा,
1: ये देश की हवाई सुरक्षा की ढाल है। ये आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर पल हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखती है। तुमने तीन सेनाओं के बारे में तो सुना है ना, जिसमें से दो के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं।
2: थल सेना, नौसेना।
1: वेरी गुड। थल सेना जमीन की रक्षा के लिए, नौसेना समुद्र की रक्षा के लिए, और वायुसेना
2: आकाश की रक्षा के लिए। मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से हमारे ऊपर हमला करे तो उसे वायुसेना ही रोकती होगी।
1: बिल्कुल सही बेटा। और वायुसेना सिर्फ दुश्मन को रोकती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती है।
2: दादू, भारतीय वायुसेना का कोई आदर्श वाक्य भी है क्या?
1: हाँ बिटिया, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना।
2: वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ और भी गहरा होगा। सही कहा ना मैंने?
1: हाँ हाँ बिटिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है। तुम जानती हो इस वाक्य को श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
2: सच में दादू?
1: हाँ बेटा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय अर्जुन देखते हैं एक ऐसा रूप जो तेजस्वी है, जो अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, जो आकाश तक फैल रहा है। और उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन के मन में आश्चर्य भी होता है और एक गहरा भय भी।
2: मतलब वो दृश्य बहुत शक्तिशाली रहा होगा दादाजी।
1: हाँ बेटा, उसी भावना को ये श्लोक बताता है। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम् व्यात्ताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम नाविंदामि शमम च विष्णु।
2: इसका भाव क्या है दादाजी?
1: इसका भाव है बेटा, हे प्रभु, आपका रूप इतना विशाल, इतना तेजस्वी है कि वो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आपकी चमकती आंखें और विराट स्वरूप देखकर मन भय और आश्चर्य से भर जाता है और आत्मनियंत्रण भी डगमगा सा जाता है।
2: लेकिन दादाजी, इस श्लोक का वायुसेना के आदर्श वाक्य से क्या संबंध है भला?
1: बिटिया, जैसे भगवान का वो रूप असीम शक्ति और तेज का प्रतीक था, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत, गति और तकनीक से दुश्मन को अभिभूत कर देती है। वायुसेना का उद्देश्य है आकाश में इतनी ताकत से उड़ना और पहरा देना कि कोई भी दुश्मन भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचे।
2: दादाजी, मैं समझ रही हूँ। मतलब नभः स्पृशं दीप्तम् सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वायुसेना की आत्मा है।
1: बिल्कुल बिटिया, ये उस ऊंचाई की पहचान है जहाँ सिर्फ ताकत नहीं, हम भारतीयों का गौरव भी दिखाई देता है।
2: दादू, अब मैं जब भी आसमान में देखूंगी ना, मुझे वही दीप्त शक्ति याद आएगी।
1: और याद रखना बिटिया, जो आकाश को छूने का सपना देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।
2: दादू, पहले के जमाने में तो लोग तलवार और बंदूक से लड़ा करते थे, तो फिर ये वायुसेना कब और कैसे बनाई गई?
1: देखो बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह समय के साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया। पहले युद्ध जमीन पर ही हुआ करते थे, फिर तोपें और जहाज आए, और फिर युद्ध आसमान तक पहुंच गया। जब दुश्मन आसमान से हमला करने लगा तो जरूरत पड़ी एक ऐसी ताकत की जो आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके।
2: ओ, अब समझी मैं। दादू, आपने बताया था कि वायुसेना बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर से वही सवाल, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी तो बताइए।
1: बिटिया, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
2: मतलब आजादी से पहले ही?
1: हाँ बिटिया, और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1 अप्रैल 1933 को। उस समय वायुसेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 अधिकारी और 19 वायु सैनिक थे।
2: मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत थी दादाजी।
1: हाँ बेटा, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उस समय जो विमान थे वे थे वेस्टलैंड वापिती, और इनसे बनाया गया पहला स्क्वाड्रन।
2: दादाजी, ये स्क्वाड्रन क्या होता है?
1: बेटा, स्क्वाड्रन मतलब विमानों और सैनिकों की एक टीम जो मिलकर मिशन पूरा करती है। कुछ ही सालों में 1936 से 1938 के बीच वायुसेना ने उत्तर पश्चिम के इलाकों में भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मीरान शाह उत्तरी वजीरिस्तान से उड़ान भरकर उस समय के अभियानों में सहयोग दिया।
2: मतलब ये शुरुआत से ही सारी सेना एक साथ काम कर रही थी।
1: हाँ बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वायुसेना की ताकत बढ़ती गई और ए फ्लाइट से सन 1936 में बी फ्लाइट बनी, और फिर सन 1938 में सी फ्लाइट, और इस तरह नंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत में आ गया।
2: ओ, यानी धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार की गई थी।
1: हाँ बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारतीय वायुसेना सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिट थी, लेकिन तब तक 16 अधिकारी और लगभग 600 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो चुके थे।
2: दादू, ये सेना हमारी रक्षा के लिए समय के साथ बनी, और इतनी छोटी शुरुआत से आज इतनी बड़ी ताकत बन गई दादाजी।
1: बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ी ताकत बन गई है।
2: दादू, इतनी बड़ी वायुसेना को कौन संभालता है? इतने सारे विमान, अधिकारी, ये सारा सिस्टम मला कैसे चलता है?
1: बताता हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। हर बड़ी ताकत को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है। वायुसेना का सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, यही पूरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होते हैं।
2: मतलब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं और पूरी वायुसेना की कमान इनके ही हाथ में होती है।
1: बिल्कुल सही बेटा। लेकिन बिटिया, इतनी बड़ी सेना को एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उनके नीचे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं।
2: वो कैसे दादाजी?
1: ये विभाग तय करता है बेटा कि कहां, कब और कैसे कार्यवाही करनी है। हर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है। ट्रेनिंग विभाग में जवानों को, पायलट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी विभाग विमान, मशीन और उपकरण सही हालत में रहें, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह लॉजिस्टिक्स, ईंधन, हथियार, खाना, जरूरी सामान सब समय पर पहुंचे, ये काम इस विभाग का होता है।
2: मतलब हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है दादाजी।
1: बिल्कुल, यही वजह है कि वायुसेना इतनी सटीक और मजबूत तरीके से काम करती है। और सबसे जरूरी बात, पूरी वायुसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है बेटा।
2: मतलब ये सिर्फ सेना नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है दादाजी।
1: हाँ बिटिया, ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये देश की सुरक्षा की रीढ़ है, रीढ़।
2: दादू, जब कोई खतरा आता है तो वायुसेना कैसे काम करती है?
1: देखो बेटा, मान लो रडार पर कोई संदिग्ध विमान दिखाई देता है, तुरंत कंट्रोल रूम अलर्ट होता है, पास के एयरबेस को सूचना दी जाती है, पायलट्स को आदेश मिलता है, कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट उड़ान भरता है और फिर हवा में जाकर उस खतरे को पहचानता है और जरूरत हो तो कार्यवाही करता है।
2: वाह दादू, ये तो फिल्मों के जैसा लगता है।
1: अरे बेटा, फिल्में तो हमारे देश के इन असली हीरोज से प्रेरणा लेकर बनती हैं।
2: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना आसमान से देश की रक्षा करती है, वो कैसे भला? और इनके पास कौन कौन से जहाज होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, जरा ये भी तो बताइए।
1: बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो, वायुसेना की असली ताकत है उसके आधुनिक विमान और घातक हथियार। सबसे पहले लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स के बारे में सुनो। ये लड़ाकू विमान वो जेट होते हैं जो सीधे दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे भारतीय बेड़े की सुखोई 30 MKI। ये बहुत ताकतवर और लंबी दूर तक उड़ सकता है।
2: जी दादू, टीवी पर अक्सर इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ।
1: फिर है बेटा राफेल, जो बेहद ही आधुनिक तकनीक वाला बहुत सटीक हमला करता है। इसके बाद आता है सुखोई, जो भारत का स्वदेशी जहाज है और सबसे तेज और हल्के जेट में आता है।
2: मतलब ये आसमान में ही दुश्मन से लड़ लेते हैं दादाजी?
1: बिल्कुल, यही हमारे आसमान के पैनी नजर वाले योद्धा हैं बेटा।
2: दादू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में और कौन कौन से जहाज हैं?
1: ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। इसके अलावा दो बेहद ही खास विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, C-17 ग्लोबल मास्टर तृतीय, जो भारी सामान ले जाने के लिए है, और C-130 जे सुपर हरक्यूलस, जो कि बेहद ही खास मिशन के लिए उपयोग किया जाता है।
2: ओ, मतलब ये सेना की मदद करते हैं।
1: बिल्कुल बेटा, इसके अलावा HAL ध्रुव रेस्क्यू और सपोर्ट के लिए AH-64 अपाचे दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी और रडार, इन विमानों का जखीरा भी हमारे पास है।
2: अच्छा दादाजी, एक सवाल और आता है दिमाग में।
1: पूछो बेटा।
2: क्या कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो सिर्फ नजर रखने का काम करते हो?
1: हाँ बिल्कुल बेटा, DRDO नेत्र और इवाक्स ऐसे ही विमान हैं। ये आसमान में आंख की तरह होते हैं, दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं।
2: और हथियार?
1: वायुसेना के पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र, हवा से हवा में मार के लिए बहुत तेज और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। वहीं लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, जो खुद लक्ष्य पहचान लेते हैं और सही जगह जाकर गिरते हैं।
2: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दादू।
1: यस इट इज बेटा। आज की वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक भी है। GPS सिस्टम, नाइट विजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है बेटा। एक बात और बेटा, वायुसेना के पास कई तरह के विमान होते हैं।
2: जैसे?
1: जैसे कि फाइटर जेट्स, जो दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो सैनिक और सामान ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं। हेलीकॉप्टर, जिनका उपयोग रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, पहाड़ी इलाकों में सपोर्ट के लिए किया जाता है। और निगरानी विमान, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहद जरूरी है।
2: दादाजी, क्या वायुसेना के पास आज के जमाने की ड्रोन और आधुनिक तकनीक भी जुड़ चुकी है?
1: हाँ बिटिया, क्योंकि अब वायुसेना सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मन को देखती है और जरूरतमंद को बचाती है और मदद करती है।
2: दादू, जब वो पायलट इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं या मौसम खराब होने पर कभी कभी तो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन्हें ऊपर से जंप भी करनी होती होगी, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता?
1: डर तो बेटा हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक वो होता है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
2: दादू।
1: हाँ बेटा।
2: जो पायलट इतने तेज जेट उड़ाते हैं, उनके पायलट बनने के प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा ये भी तो बताइए।
1: बताता हूँ बेटा, कोई भी पायलट बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादा।
2: ये तो मैं जानती हूँ दादाजी। आप ये बताइए, वायुसेना में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं?
1: बेटा अगर तुम 12वीं के बाद जाना चाहो ना, तो एक एग्जाम होता है NDA, उसमें पहले पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल।
2: और अगर कोई कॉलेज के बाद जाना चाहे तो?
1: तब आता है CDS, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू और बाकी सारी प्रक्रिया।
2: और दादू, वायुसेना का अपना भी कोई एग्जाम होता है क्या?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं FCAT, यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खास वायुसेना के लिए होता है बेटा, जिससे तुम पायलट भी बन सकती हो और ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकती हो। लेकिन बिटिया, इन सब में एक चीज सबसे खास होती है, SSB इंटरव्यू,
2: वो इतना खास क्यों है दादाजी?
1: क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है तुम्हारा आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेती हो।
2: मतलब वहाँ होती है इंसान की असली पहचान।
1: बिल्कुल, वहीं तय होता है कि तुम वर्दी के लायक हो या नहीं।
2: अच्छा दादू, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है?
1: असली सफर तो तभी शुरू होता है मेरे बच्चे, जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और यहीं से तैयार होते हैं भारत के भविष्य के पायलट्स।
2: अच्छा दादाजी, ट्रेनिंग के कितने फेज होते हैं और क्या ये आसान होती है?
1: नहीं बिटिया, बिल्कुल आसान नहीं होती। ट्रेनिंग धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। सबसे पहले उन्हें किताबों से समझाया जाता है कि विमान कैसे उड़ता है, हवा में संतुलन कैसे बनाता है, रास्ता कैसे तय करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी, एरोडायनामिक्स, नेविगेशन पढ़ाया जाता है।
2: मतलब पहले दिमाग की ट्रेनिंग होती है?
1: हाँ, और फिर आता है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे विमान से होती है, धीरे धीरे बड़े और तेज जेट तक पहुंचने के लिए।
2: हो, मतलब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाते हैं। दादाजी, ये तो बड़ा मजेदार है। फिर अगले फेज में क्या होता है?
1: इसके बाद सिखाया जाता है कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या करना है, यानी हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, दुश्मन का सामना कैसे करना है।
2: मतलब असली जंग की तैयारी यहीं से शुरू होती है।
1: हाँ बेटा, यहाँ अपने जीवन को बचाने की तैयारी कराई जाती है। मानो कि अगर पायलट कहीं फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए समुद्र में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह उन्हें जीना सिखाया जाता है बेटा।
2: मतलब उन्हें हर लिहाज से कठोर बनाया जाता है।
1: बिल्कुल बेटा, इसी ट्रेनिंग से एक आम इंसान एक मजबूत सैनिक बनता है, क्योंकि एक पायलट को सिर्फ उड़ना नहीं है बल्कि हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।
2: अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा।
1: पूछो, मैं कैसे जानूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं बेटा।
2: दादाजी, मेरा वही सवाल कि क्या लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं?
1: अच्छा, तो बेटा मेरा भी वही पुराना जवाब, आज की बेटियां तो सारा का सारा आसमान जीत रही हैं बेटा। महिलाएं अब फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, इंजीनियर, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑफिसर भी बन रही हैं। वो कहते हैं ना कि आज की नारी सब पर भारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश की रक्षा भी कर रही है।
2: दादाजी, मतलब मैं भी एयरफोर्स में जाकर एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ ना, और एक वायु सैनिक भी बन सकती हूँ?
1: बिल्कुल बन सकती हूँ बेटा, जरूर, और बनोगी भी।
2: दादू, वायुसेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
1: बिटिया, वायुसेना में इन्हें पोस्ट नहीं, रैंक कहा जाता है, रैंक।
2: और इसकी शुरुआत कैसे होती है?
1: फ्लाइंग ऑफिसर, यहीं से एक ट्रेनिंग का करियर शुरू होता है बेटा। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर मार्शल, और सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल।
2: मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती है काम भी बदलता रहता है।
1: बिल्कुल बेटा, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
2: ओह, मतलब हर रैंक के साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है दादाजी।
1: बिल्कुल बिटिया, यही अनुशासन और जिम्मेदारी वायुसेना को मजबूत बनाती है।
2: दादू।
1: हाँ बेटा।
2: क्या वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही काम आती है?
1: नहीं बिटिया, असली महानता सिर्फ युद्ध में नहीं सेवा में भी होती है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब सबसे पहले वायुसेना उनकी मदद को पहुंचती है।
2: जैसे हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना, खाना और दवाइयां पहुंचाना, ये भी वायुसेना करती है दादाजी।
1: हाँ बेटा, ये सिर्फ लड़ते नहीं लोगों की जान भी बचाते हैं।
2: आगे आने वाले भविष्य में वायुसेना कैसी होगी दादाजी?
1: आज की तुलना में कई गुना और भी शक्तिशाली होगी बेटा। और भी शक्तिशाली से मेरे कहने का मतलब है कि ड्रोन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य की वायुसेना का हिस्सा होंगे और हमारा भारत ज्यादा सुरक्षित होगा।
2: दादाजी, क्या वायुसेना में भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं?
1: हाँ बिटिया, बिल्कुल मिलते हैं। अब तक देश के लिए बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने वीरता से देश के लिए युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलते हैं। और ये बस मेडल नहीं है, बल्कि देश के लिए उन वीरों के बलिदान की असली पहचान है।
2: दादू,
1: हाँ बेटा,
2: आपने युद्धों की बात की, क्या वायुसेना ने कभी कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है?
1: बिल्कुल किया है बिटिया। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफेद सागर।
2: ये कब हुआ था दादाजी?
1: देखो बेटा, ये ऑपरेशन हुआ था 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुश्मन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था।
2: इतनी ऊंचाई पर लड़ाई? वहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा दादाजी।
1: हाँ बेटा, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका बहुत अहम थी। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई कि वो दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाए और भारतीय सेना की मदद करे। और इसके अलावा वायुसेना का एक और काम था, पहाड़ों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालना।
2: लेकिन दादू, इतनी ऊंचाई पर हमला करना आसान तो नहीं रहा होगा?
1: बिल्कुल नहीं बिटिया, वहाँ हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है और लक्ष्य साफ दिखाई नहीं देता है बेटा। फिर भी हमारे वायुसेना के जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सटीक हमले किए।
2: अच्छा दादाजी, इस ऑपरेशन में कौन कौन से विमान इस्तेमाल किए गए थे?
1: इस ऑपरेशन में कई विमानों का इस्तेमाल हुआ बेटा, जैसे MiG-21, MiG-27, Mirage-2000। तुम्हें पता है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Mirage-2000 की रही, जिसने सटीक बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया।
2: सच में दादू?
1: हाँ बेटा।
2: इस ऑपरेशन की और भी खास बातें होंगी ना, वो भी तो बताइए।
1: खास बात तो यही है कि ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर एयर पावर का इस्तेमाल हुआ बेटा, और हमारी वायु वीरों को हर सेकंड खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल दिखाया।
2: मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी दादाजी। ऑपरेशन सिंदूर भी तो इसी तरह के साहस का प्रतीक है ना?
1: हाँ बिटिया, यही असली वीरता है। ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारे गौरव की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ये ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी सीमा पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर सबक सिखा सकते हैं बेटा।
2: दादू, अब समझ में आया कि वायुसेना सिर्फ आसमान में प्लेन्स नहीं उड़ाती, बल्कि जीत और हौसलों के पंखों से देश की रक्षा भी करती है।
1: बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जब देश को जरूरत होती है तो ये आकाश के योद्धा इतिहास रच देते हैं।
2: अच्छा दादाजी, ये पासिंग आउट परेड क्या होती है? मैंने कई बार पहले इसके बारे में सुना हुआ है।
1: पासिंग आउट परेड वो खास दिन होता है जब एक कैडेट की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और उसी दिन वो आधिकारिक तौर पर देश की सेना का हिस्सा भी बन जाता है।
2: मतलब ये उनका फाइनल एग्जाम जैसा होता है?
1: हाँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों का जश्न होता है बेटा। इस दिन सभी कैडेट्स एकदम अनुशासन में एक जैसी चाल में परेड करते हैं।
2: अच्छा दादाजी, उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं क्या?
1: हाँ बेटा, माता पिता, परिवार सभी आते हैं। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं बेटा।
2: दादू, ये पल बहुत भावुक पल होता होगा ना?
1: हाँ बेटा, सबसे खास पल होता है जब कैडेट को उसके विंग्स या रैंक मिलते हैं। उसी पल वो एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि देश का रक्षक बन जाता है।
2: मतलब उस दिन उनका सपना सच हो जाता है और सारी मेहनत सफल हो जाती होगी दादाजी।
1: हाँ बेटा, पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, ये उस वादे का दिन है जब एक जवान कहता है, अब मेरा जीवन देश के नाम।
2: दादू, अब समझ में आया, ये सिर्फ परेड नहीं, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।
1: और याद रखना बिटिया, वर्दी पहनना आसान नहीं है, इस सम्मान को तो ता उम्र निभाना होता है, और वही असली वीरता है।
2: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना हर समय आसमान पर नजर रखती है, लेकिन अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या होता है?
1: जब भी आसमान में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो सबसे पहले उसे रडार सिस्टम पकड़ता है। अब तुम पूछोगी कि रडार सिस्टम क्या होता है दादू?
2: हाँ दादू, रडार सिस्टम क्या होता है?
1: रडार सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बहुत दूर से ही विमान की दिशा, गति और ऊंचाई बता देता है।
2: मतलब बिना देखे ही सब पता चल जाता है?
1: हाँ, उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर खतरा लगे तो तुरंत आदेश दिया जाता है स्क्रैम्बल।
2: स्क्रैम्बल, ये क्या होता है दादू?
1: इसका मतलब होता है तुरंत उड़ान भरना। पायलट कुछ ही मिनटों में पूरी तैयारी के साथ अपने लड़ाकू विमान लेकर आसमान में पहुंच जाते हैं बेटा।
2: इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है दादाजी?
1: यही तो ट्रेनिंग और अनुशासन का कमाल है बेटा। पायलट हमेशा स्टैंड बाय मोड यानी पूरी तरह तैयार रहना, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।
2: दादू, जब पायलट उड़ान भर लेते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है?
1: इसके लिए होता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, यानी जमीन पर बैठे अधिकारी पायलट को हर पल निर्देश देते हैं, जैसे किस दिशा में जाना है और कितनी ऊंचाई रखनी है और लक्ष्य कहाँ पर है।
2: मतलब पायलट अकेले फैसला नहीं लेते?
1: नहीं बिटिया, ये एक टीम वर्क होता है। रडार, सैटेलाइट, कंट्रोल रूम और पायलट्स सब मिलकर मिशन पूरा करते हैं।
2: और जब दुश्मन सामने आ जाता है तब क्या होता होगा?
1: तब पायलट पहले लक्ष्य को लॉक करता है, यानी अपने सिस्टम से दुश्मन की सटीक पहचान करता है। उसके बाद आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
2: दादू, ये तो बहुत खतरनाक होता होगा ना?
1: हाँ बिटिया, ये बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन पायलट को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है तेज निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और सटीक हमला करना।
2: एक शिकारी बाज की तरह सोच समझ कर हर कदम उठाते होंगे।
1: बिल्कुल, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो पायलट सुरक्षित वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं मिशन सक्सेस।
2: दादू, अब समझ में आया वायु सेना के इन हीरोज को वायु योद्धा क्यों कहते हैं?
1: बिल्कुल बिटिया, वायु सेना की असली ताकत सिर्फ उसके विमान नहीं बल्कि उसकी सोच, तकनीक और टीम वर्क है।
2: सही दादू। जब तक ये आसमान के पहरेदार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, तब तक हम सब बेफिक्र रह सकते हैं।
1: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बेटा, मैं थक गया हूँ, घर चले?
2: चलिए दादू, घर चलते हैं।
1: चलो।
3: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे आकाश की विजेता भारतीय वायुसेना पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज का विषय था आकाश के विजेता भारतीय वायुसेना। इस कार्यक्रम में स्वर दे रहे थे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। अब हमारा अगला कार्यक्रम है आजाद हिंद, क्षमा करें, हमारा अगला कार्यक्रम है हिंदोस्तां हमारा। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी उल्लासकर दत्त को समर्पित है।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा आजादी के रण बांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: शराब के नशे में धुत रईस जादे ने एक आदमी को कुचला। अरे बाप रे, कॉलेज के चुनाव के दौरान छात्रों में झड़प। हे भगवान। रहमान चाचा, ये आजकल की पीढ़ी ना बस इन्हीं चीजों में लगी हुई।
1: तुमने बिल्कुल सही फरमाया बेटा, ये आजकल की पीढ़ी ना नशे और चकाचौंध में बिल्कुल भटक गई है।
2: पुरान, काय पुरान, कहाँ मर गया रे?
3: अरे मरे नहीं है अम्मा, जिंदा है।
2: यार तो जिंदा हो तो बेटा आवाज भी तो दे दे करे, सुन तो लाए करे, चिल्लिया चिल्लिया के गलो फटगा हमाओ।
3: ऐसे ही कहे थे अम्मा, है ना, प्यार से बोला करो। पुरान, अरे ओ पुरान,
2: तुम आईना से हो जाए, अब इतने प्यार से बोलवाइयो अपनी घरवारी से। अम्मा तो ऐसा ही बोले बे है तुम्हें।
4: अरे राम राम अम्मा, काहे चिल्ला रही हो पूरन पे?
2: अरे भैया का बताइए गज भी, अब तुम आई समझाए खो, तुम में बिल्कुल मन ही नहीं लगाती आए। अब 10 दिन से बाहर घूम के आओ है अब्बाई जो, तो काम में मन नहीं लगा रहो आए।
4: अरे अरे हाँ भाई पूरन, तुम बहुत दिनों से नहीं दिखे, कहाँ गए थे भाई?
3: अरे काका कलकत्ता गया था, वहाँ का दशहरा देखने।
4: अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा। अब बेटा देखो, देश के अलग अलग जगह की संस्कृति और उत्सव तो हर आदमी को देखना चाहिए।
2: हाँ, हर आदमी को देखना चाहिए, और दुकान सांगरी अम्मा को अकेले देखना चाहिए। का भैया तुम तो और से खाओ एखो।
4: अरे हाँ भाई पूरन, बैठो और बताओ कि कैसा था वहाँ का दशहरा।
3: अरे काका उसकी तो बात ही निराली है, लेकिन काका एक बात बताएं।
4: हाँ?
3: हम ना वहाँ पर शहीद स्मारक भी घूमने गए।
4: अच्छा?
3: हाँ, वहाँ क्रांतिकारियों और आजादी की लड़ाई में शामिल देशभक्तों की प्रदर्शनी भी देखी।
4: अरे वाह भाई वाह।
3: काका वहाँ बहुत से लोगों के चित्र के साथ जानकारी भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी। अब हमने कहा कि बस नाम लिख ले और यहाँ के काका से पूछ लेंगे। क्यों रहमान चाचा, ठीक कहा ना?
1: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे अपने काका तो क्रांतिकारियों की जानकारी के मामले में गूगल से भी आगे हैं।
4: अच्छा ये बताओ किसके बारे में जानना चाहते हो?
3: काका वो उल्लासकर दत्ता और जितेंद्र नाथ राय है ना, उनके बारे में।
4: अच्छा, अब कलकत्ता का दशहरा देख के आए हो तो बंगाल की क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हो, है ना?
2: हाँ भैया, इतना ही रुचि पूरन बेटा बंगाली मिठाई के बारे में लेते नहीं तो आज होटल और बड़ी हो जाती। जब से आओ है उन्हीं के बारे में जानवे की रट लगाए बैठो है।
1: हाँ तो भाई गजबी है। अरे भाई उनके बारे में कुछ बताओ ना।
4: हाँ क्यों नहीं रहमान भाई, उल्लासकर दत्ता का जन्म जो है वो बंगाल के कालीकच गांव में हुआ। पिता का नाम था द्विजदास।
3: काका कुछ जानकारी तो हमें भी है।
4: हाँ।
3: जैसे अपनी स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के अलावा उन्होंने विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अध्ययन भी किया।
4: हाँ।
3: और रासायनिक पदार्थों का ज्ञान अर्जित किया।
4: हाँ भाई पूरन, ये तो ऐसे देशभक्त थे अपने उल्लासकर दत्त कि जिन पर किसी भी माँ बाप और पीढ़ी को नाज हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में ही इन लोगों ने अपने आप को देश प्रेम की राह में मोड़ दिया।
1: वाह भाई वाह, एक वो पीढ़ी थी और पूरन आज एक ये पीढ़ी है, हिंसा नशाखोरी और पता नहीं क्या क्या।
4: अरे लेकिन रहमान भाई उसमें दोष केवल उनका नहीं है, दरअसल हम ना उन्हें इतिहास की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही भविष्य की तस्वीर बना रहे।
3: अच्छा काका ये बताइए कि उल्लासकर दत्त क्रांतिकारी दल में कैसे आए?
4: अरे भाई पूरन मन से तो वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे, है ना? अब बड़े होकर उन्होंने ये तय किया कि अब पूरी तरह से वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहेंगे।
5: की करोश बाबा?
6: किछु ना मा, कुछ नहीं।
5: आजकल ती बड्डो शांत थाकोश। किसु होय नहीं तो बाबा?
6: नहीं माँ, तू परेशान मत हो, वैसे ही।
5: अच्छा भालो थाकिश बाबा।
6: जी
7: क्यों भाई उल्लासकर, क्या कर रहे हो?
6: कुछ नहीं दोस्त, बस कुछ सोच रहा था।
1: किस बारे में?
6: कल ही युगांतर में एक देशभक्ति से ओतप्रोत पंक्ति पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद मन में एक बेचैनी सी हो रही है। लग रहा है कि अगर ये जीवन देश के काम नहीं आया इसका क्या मोल।
1: देखो उल्हासकर, अगर तुम्हारे यही ख्यालात हैं और तुम इसी पथ पर जाना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर चलता हूँ।
6: कहाँ?
1: एक ऐसी जगह जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भाषण होने वाला है।
6: अच्छा?
1: जहाँ आज वे स्वदेशी समाज विषय पर भाषण देंगे, बहुत से लोग वहाँ आएंगे।
6: ऐसा?
1: अगर तुम भी। वहाँ चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
6: जरूर जरूर दोस्त जरूर।
7: हे कम हियर।
1: लो आ गए तुम्हारी आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ।
8: सुनो मिंदु।
9: हाँ।
7: हेलो आंटी। अरे आंटी जरा सुनिए।
2: अरे आंटी होंगे तुम्हारी अम्मा, हमारा नाम तो अम्मा है।
7: ओके अम्मा, ओके ओके। अच्छा यहाँ कुछ खाने को मिलेगा?
2: हाँ बैठ जाओ अबाई होते, हम गर्मा गर्म आलू बंडा लगवाए दिए थे, बैठो।
8: व्हाट? आलू बंडा? नो कुछ और नहीं मिलेगा यहाँ, सम स्नैक्स।
2: अरे बेटा भाई एक बार खा के तो देखो आलू बंडा, तुम अपने ये जापे जैसा भूल गए हो।
8: यश आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन। ओके हम यहीं बैठ जाते हैं।
7: ओके
2: हाँ बैठ जाओ। एक काम करो बेटा, जब तक हम आलू बंडा निकाल रहे गरम गरम, वो ते कक्का के लेगा बैठ जाओ, वो साथ में हेसु कक्का की आजादी की कहानी को स्वाद भी ले लियो। ये बैठ जाओ।
8: आजादी की कहानी? ओह इट्स सो बोरिंग।
9: काका तो तब तक आप आगे बात बताओ ना।
4: हाँ तो जब उस दिन उल्हासकर दत्त रविन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण सुनने गए ना तो वहाँ भारी भीड़ थी।
9: अच्छा?
4: इतना बड़ा सैलाब देख के अंग्रेज अफसर के तो होश ही उड़ गए और वो बौखला गया और भीड़ को भगाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया।
9: अच्छा?
10: Oh my God! Too much crowd is there. It was unexpected for me. इतना सारा लोग यहाँ पर स्पीच सुनने को आया, हमको भीड़ को भगाना होगा। I say लाठी चार्ज।
11: तुम्हें लज्जा हो उचित अफसर। Shame on you अफसर। इन निर्दोष और निरपराध बच्चों और औरतों पर लाठी चलवाते हो, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए।
10: अगर तुम मर्द का बच्चा है और तुम्हें इन औरतों और बच्चों का इतना खेर है तो कम ऑन फेस मी, मेरा सामना करो। तुम सामने आओ।
4: और उल्हासकर ने उसकी लाठी पकड़ ली और सिपाही को पीट दिया।
9: अरे वाह काका, ये हुई ना बात।
4: मगर सारे सिपाही उल्हासकर पर टूट पड़े
9: हैं?
4: और उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। हाँ, और डॉक्टर सुरेंद्र मोहन दास जो कि कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर थे।
9: अच्छा।
4: उन्होंने उल्हासकर की जमानत ली और इलाज भी करवाया।
12: अब तुम बिल्कुल ठीक हो उल्हासकर, बस कुछ दिन आराम और कर लेना।
6: हम आजादी के दीवानों के लिए आराम अभी नहीं है डॉक्टर साहब। अंग्रेजों की ये जाति और अत्याचार देखने के बाद इनकलाब का समय तो अब आया है।
12: तो अब आगे क्या सोचा है?
6: सोच रहा हूँ कि वारिन घोष जी से मिलकर क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाऊं।
12: वारिन घोष से परिचय है तुम्हारा?
6: नहीं मुलाकात तो नहीं है, मगर युगांतर में उनके लिखे लेख द्वारा उनके क्रांतिकारी विचारधारा से परिचय अवश्य है।
4: और भाई देखो उस समय तो वारिंद्र घोष भी क्रांतिकारी और देशभक्त नौजवानों की तलाश कर रहे थे।
9: अच्छा?
4: और उसी दौरान उनका परिचय उल्हासकर से हुआ और फिर हुआ ये कि उल्हासकर उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए।
7: काका आप कहीं बंगाल के फ्रीडम फाइटर उल्हासकर दत्त की बात तो नहीं कर रहे?
4: अरे हाँ बेटा, अरे उनकी तो बात चल रही है।
7: आई नो हिम बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम कलकत्ता।
4: अच्छा,
7: पर उनका नाम सुना है, ज्यादा नहीं जानता।
1: तो बेटा आज हमारे गूगल गजभिये काका से सुन के तुम भी उनके बारे में जान जाओगे।
7: तो काका कुछ और बताइए ना उनके बारे में। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम।
4: अच्छा,
2: ले इन भैया को सोई लग गई काका की कहानी की लत।
4: तो बेटा इसके बाद हुआ ये कि उल्हासकर दत्त और प्रफुल्ल चक्रवर्ती वारिंद्र घोष के साथ उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए।
13: इस अत्याचारी बहरी अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए अब हमें धमाकों का सहारा लेना होगा, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि हम इसकी ज्यादतियां यूं ही बर्दाश्त करते जाएंगे।
14: इसके लिए हमें बम बनाना होगा घोषता, जिसके लिए बारूद और दूसरी चीजों का इंतजाम भी करना होगा।
13: इंतजाम हो जाएगा,
14: मगर बम कौन बनाएगा? आमी बना तिवारी घोषता, मैं बना सकता हूँ। इससे पहले मैं विक्टोरिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रह चुका हूँ। अगर चीजें मुहैया हो जाए तो आमी बम बना तिवारी, मैं बना सकता हूँ बम।
13: शाबाश उल्हास कर, शाबाश। अगर हम सफल हुए तो इस अंग्रेजी सरकार की तो हम ईंट हिला देंगे।
4: और बस उल्हास कर दत्त अपने पुराने ज्ञान के आधार पर अपने कमरे में प्रयोग करने में जुट गए। उनके पिता को लगा जैसे बेटा छोड़े हुए अध्ययन को पूरा कर रहा है।
9: अच्छा, बिल्कुल वैसे ही ना काका, जैसे अम्मा को लगता है कि हम यहाँ होटल में अम्मा का हाथ बटाने आते हैं, जबकि हम तो आपकी कहानी सुनने के लिए आते हैं।
1: क्या कर रहे हो बेटा?
14: कुछ नहीं, छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरा कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छे, लगे रहो बेटा। और हाँ, कुछ समय अपनी माँ के लिए भी निकाल लिया करो। खैर, मैं चलता हूँ।
14: सारा समय तो माँ को ही दे रहा हूँ बाबा, मातृभूमि को।
5: बाबा दिन रात काजे लाइक गथा कोश, शरीर ट्रैक्टिक तो ख्याल कर बाबा।
14: उसके लिए तू तो है ना माँ।
5: बाबा बड्डो भय है रे बाबा, तू एमन कोनो काज करता छस ना तो
14: ना।
5: जेटा तुर करा उचित ना।
14: ना ना माँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और जिसमें मेरी माँ को गर्व हो।
5: अच्छा ने, एबार खाया लो बाबा, खाया लो, तारपर शुया पड़।
4: और आखिर कई परीक्षणों के बाद उन्होंने शक्तिशाली बम बना भी लिया और अब बारी थी उसको आजमाने की उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ।
7: लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर का अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू को सबक सिखाना ही होगा।
14: ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं घोषदा, उस लाट के अत्याचारों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए।
9: मगर कैसे?
7: सुनने में आया है कि कल एंड्रू फ्रेजर रांची जाने वाला है। हम उस ट्रेन लाइन पर बम रखकर उस सरकारी पिट्ठू को उड़ा सकते हैं।
15: सुझाव तो अच्छा है, मगर इसमें सावधानी रखनी होगी।
7: हम जानते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा।
15: किंतु घोषदा, इस काम के लिए किस खुशनसीब को चुना है आपने?
7: इस काम को अंजाम देगा उल्हासकर। क्या कहते हो उल्हासकर?
14: वाह दादा, आपने ये काम देकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं सचमुच आभारी हूँ। देश के काम के लिए चुना जाऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती है?
7: तो फिर ये तय रहा कि जब लाट की गाड़ी जाने वाली होगी तो उल्हास कर ये काम करेगा।
13: वंदे मातरम,
16: वंदे मातरम।
4: और बेटा उल्हास कर दत्त जैसे ही लाइन पर बम रखने पहुंचे तो वहां लोगों की काफी चहल पहल थी।
14: अच्छा, उल्हास कर, अगर तुम यहाँ बम रखोगे तो वहाँ खड़े आम लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ी दूर पर रखना होगा।
17: तुम चिंता मत करो दोस्त, ट्रेन निकलने में अभी समय है, तब तक मैं इसे थोड़ी दूरी पर रखाता हूँ।

0: उफ, आज इस लाट की किस्मत अच्छी थी, बच गया। लेकिन कब तक, कब तक खैर मनाएगा ये?
1: कोई बात नहीं उल्लासकर, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, लेकिन इस बार हमारी कोशिश और बड़ी होगी।
2: हमें पता चला है कि लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर खड़कपुर जा रहा है।
0: घोषदा, इस बार हम बम नहीं माइन बिछाएंगे ताकि बड़ा धमाका सुनाई दे इस अंग्रेजी सरकार को।
1: हाँ, इस बार हम डायनामाइट का इस्तेमाल कर उस लाइन में बिछाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उल्लास करके कंधों पर।
0: है दादा, हाँ जरूर। वंदे मातरम,
3: वंदे मातरम।

0: ইশ, লর্ড অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আবার বেঁচে গেছে, বাল বাল বাজ গে। পেপারে কি লিখেছে দেখো, খড়গপুর সে নারায়ণগড় জানে বালি রেল লাইন পর বিদ্রোহী দ্বারা ভীষণ ধমাকা, ট্রেন কে ডিব্বে ক্ষতিগ্রস্ত, সরকার কা অন্দেশা হ্যায় কি ইসকে পিছে বিদ্রোহীয় কা হাত হ্যায়, সরকার সখতে মে।
1: কম সে কম ইস ধমাকে সে সরকার কো হামারি তাকত কা তো অন্দাজা হো গয়া।
0: মগর দাদা, ইয়ে লর্ড অ্যান্ড্রু ফ্রেজার इस बार फिर बच गया हमारे हाथों से।
2: इन रिबल्स का एक्टिविटी लगातार बढ़ रहा है, हमें इन पर क्लोज वॉच रखना होगा। एनी हाउ,
3: तब तो फिर क्रांतिकारियों के हौसले जवाब दे गए होंगे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया होगा।
4: अरे बेटा, जिसके इरादे बदल जाएं वो क्रांतिकारी का है क्या? बल्कि इसके बाद तो क्रांतिकारियों का हौसला और बढ़ गया। तभी एक क्रांतिकारी आया जिसका नाम था जितेंद्र नाथ राय।
5: इस बार हम उन पर सामने से हमला करेंगे दा।
0: किंतु सामने से हमला करने पर तुम पकड़े भी तो जा सकते हो।
5: मुझे अपने पकड़े जाने की चिंता नहीं है घोषदा, चिंता इस बात की है कि वो अत्याचारी अभी तक जिंदा है।
1: अब तुम क्या करोगे?
5: सुना है कि लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर एक सभा में आने वाला है, वहीं सबके सामने उस अत्याचारी को सजा दे दी जाएगी। बस उसके लिए एक पिस्तौल चाहिए।
1: हो जाएगा।
6: वंदे मातरम,
7: वंदे मातरम।
4: और जानते हो पूरन बेटा?
8: क्या काका?
4: ये जितेंद्र नाथ जो हैं उस समय कॉलेज में पढ़ते थे।
8: कॉलेज में?
1: ओह, इट्स अमेजिंग, इतनी कम उम्र में ही देश पर मर मिटने का ये जज्बा।
3: देन

0: और नॉट। हाँ कबूल करता हूँ, वंदे मातरम।
1: कोर्ट तुम्हें 10 ईयर्स की सजा का ऐलान करती है। द कोर्ट इज adjourned।
2: साथ ही उल्लास कर दत्त पर भी केस चलाया गया।
0: अच्छा।
3: मिस्टर उल्लासकर, आप क्रांतिकारी दल में किस तरह शामिल हुए?
4: युवांतर पढ़कर बारिन घोष का पता लगाकर दल में शामिल हो गया।
3: दल में शामिल होने से पहले आप क्या करते थे?
4: विस्फोटक पदार्थों के निर्माण का प्रयोग किया करता था। चंदननगर बम कांड के समय मैं वही था और खड़गपुर घटना के लिए माइन मैंने ही तैयार किया था।
3: तो वो माइन आपने बनाया था?
4: जी हाँ।
3: मिस्टर उल्लासकर, वो माइन आपने कहाँ बनाया था?
4: गोवा बागान के इलाके में एक कमरा हमने लिया और वहीं हमने इस काम को अंजाम दिया।
3: किन चीजों से बनाया?
4: वो ढले हुए लोहे के आधार में डायनामाइट से भरा हुआ माइन था। पिक्रिक एसिड और क्लोरेट ऑफ पोटाश को मिलाकर बनाया गया था।
3: इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बनाया?
4: जो जितना बहरा होगा उसे सुनाने के लिए उतने ही बड़े धमाके की जरूरत होती है।
3: आप जानते हैं मिस्टर उल्लासकर कि यह बयान देकर आप लगातार फंसते जा रहे हैं, ये आप क्यों कबूल कर रहे हैं?
4: अगर यदि फंसना ही है तो मैं फंसूं? अब निर्दोष लोगों को फंसाने से बचाया जाए। वंदे मातरम।
5: तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो?
4: गुनाह तो आपकी नजरों में होगा, पर जो मैंने किया मैं उसे कबूल करता हूँ।
5: मिस्टर उल्लासकर डेथ, ये कोर्ट आपको फांसी की सजा का हुक्म देती है।
4: वंदे मातरम।
6: वंदे मातरम।
7: तू एक टू चिंता करिस ना बाबा, मैं एक टू कांदुम ना। तू ये मुने एक टक काज कुछ

0: मगर बाद में उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उल्हासकर दत्त को बाकी क्रांतिकारियों के साथ काले पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। यहां अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। अगर इनके बारे में तुम जान जाओगे ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
1: दे वर रियली ग्रेट काका। आज आपकी कहानी सुनकर यह एहसास हुआ कि हमारे भविष्य के निर्माण के लिए शहीदों ने कैसे अपना जीवन न्योछावर कर दिया।
2: हाँ काका, आज सचमुच उनके बलिदान की कथा सुनकर दिल में उनके प्रति श्रद्धा उभर रही है।
3: और हमारे आलू बंडा खा ले हो तो साथ में जीव से सोई श्रद्धा उभरन लग है। लियो खा तुम और अच्छे गर्मा गर्म है।
2: ओके आंटी, सॉरी अम्मा।
1: वाव, इट्स सो टेस्टी। अम्मा, ये तो सच में बहुत टेस्टी है।
3: काय बेटा, सो भूल गई नहीं अपने पिज्जा को नाम के नहीं?
1: सचमुच अम्मा। काका, आज ये जाके पता चला कि हमारे देश की चीजें और जड़ें बहुत समृद्ध हैं।
0: हाँ बेटा, बस जरूरत है उन जड़ों से आज की पीढ़ियों को जोड़ने की।
1: तो ये मान लो काका कि हम दोनों तो उन जड़ों से जुड़ ही गए।
4: हाँ, और इसका श्रेय जाता है हमारे गजबिये काका को।
2: तो काका, अब चलते हैं, मगर आप और आपकी कहानी हमेशा याद रहेगी।
0: अरे वाह।
1: और साथ ही अम्मा के आलू बंडे भी हमेशा याद रहेंगे।
3: और कब

0: भाऊ का भाऊ अम्मा खसो याद कर लियो बेटा।
1: हाँ अम्मा जरूर याद करेंगे।
2: बाय आंटी।
3: ये था कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी उल्लासकर दत्त को समर्पित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिवस भोपाल में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में, जहां शुक्रवार यानी 15 मई की शाम रचना पाठ और व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
1: यथार्थ के सपने बहुत ऊंचे नहीं थे, बस वह जीवन में व्यवहारिक था, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसके विचार से मम्मी पापा आज के जमाने के हिसाब से नहीं थे, वह थोड़े भावुक, रिश्तों का मान रखने वाले।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में। ये हैं डॉक्टर अशोक व्यास।
1: इस कहानी का शीर्षक है दिल, रील और डील। इसमें देखें, दिल पहले आया है, उसके बाद रील आई है, फिर डील आई है। अब कहानी में कैसे ये पात्र किस चीज को प्रमुखता देते हैं वो आप पढ़े सुनेंगे तो या आपको अच्छा लगेगा। इस कहानी का नायक है यथार्थ। उस यथार्थ पर मैंने कहानी लिखी है कि यथार्थ के माता पिता परेशान हो गए थे। उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढते हुए उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इतने सारे बायोडाटा उन्होंने इकट्ठे कर लिए, बातें बहुत चल रही थी, परिचय सम्मेलन में भी कई बार पर्यटन कर लिया था, वहाँ भी परिणाम के नाम पर परिचय पुस्तक मिलती थी जिसमें लड़के लड़कियों की जानकारी ऐसी मिलती थी जो यथार्थ की कुंडली या उसके बायोडाटा से मेल नहीं खाती थी। यथार्थ के सपने बहुत ऊंचे नहीं थे, बस वह जीवन में व्यवहारिक था, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल होना कहते हैं। उसके विचार से मम्मी पापा आज के जमाने के हिसाब से नहीं थे, वह थोड़े भावुक, रिश्तों का मान रखने वाले, परंपरावादी, आदर्शवादी भले नहीं थे लेकिन हृदय के तल पर जीने वाले थे, दिल का कहा मानते थे, या साफ शब्दों में कहें तो आज के सोशल मीडिया के ज्ञान के जमाने में थोड़े नासमझ ही थे। वैसे भी जब कोई लड़का पढ़ लिख कर अच्छा खासा कमाने धमाने वाला बन जाए तो उसके दिमाग में पहला विचार यही आता है कि माँ बाप की सोच आज भी पिछड़ी है, भले ही माँ बाप शिक्षित खुली सोच रखने वाले ही क्यों ना हो। कि आज की पीढ़ी आधुनिक, पढ़ी लिखी, दिमागदार, समझदार, स्मार्ट और प्रैक्टिकल है, और यथार्थ इतना भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था कि माँ बाप को सपने देखने से रोक सके। उनके अनुसार बेटे की शादी हो जाए, दादा दादी बन जाए तो मानो उनका जन्म सफल हो गया। वैसे यथार्थ के लिए जरूरी नहीं था, फिर भी सामने वाली पार्टी की अगर इच्छा होगी तभी मामला आगे बढ़ेगा, या चाइल्ड फ्री फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली या जिस पर भी दोनों पार्टी सहमत हो जाए। यथार्थ कंप्यूटर विशेषज्ञ IIT का टॉपर था, कई कंपनियों से ऑफर मिलने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर उसने डील करके ज्वाइन किया था। उसने पैकेज पर डील करके ज्वाइन किया, मेहनत से काम करता था, बहुत समझदार और आज की भाषा में कहें तो बहुत शार्प, स्मार्ट, लेकिन जिंदगी में प्रैक्टिकल था। उसे बिल्कुल नेक टू नेक अपने स्तर की लड़की चाहिए, उसके बराबर की पढ़ी लिखी हो, उससे कम नहीं चलेगी, उसके बराबर पैकेज वाली होनी चाहिए, पैकेज अधिक हो चलेगा, जीवन में महत्वाकांक्षी होना चाहिए। उसे खाली रोटी बनाने वाली लड़की नहीं चाहिए, उसे घर का काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए, उसे वह लड़की चाहिए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, समाज में, सोसाइटी में, दोस्तों में उसका रुतबा बढ़ा सके। शादी विवाह भी उसके लिए एक ऐसी डील थी जिसकी शर्तें विवाह से पहले तय हो जाए तो अच्छा रहता है। आखिर में यथार्थ के मम्मी पापा ने आज के जमाने की वास्तविकता को स्वीकार करके यथार्थ से कहा कि तुम्हारी तुम जानो, जिसे तुम पसंद करो वही हमारी पसंद होगी। बहुत खोजबीन और मेट्रोमिनल के में विज्ञापन देने के बाद एक लड़की थोड़ा ठीक ठाक लगी।

आगे बात करें, वरना तुम भी दूसरा देखो, मैं भी किसी दूसरे प्रपोजल के बारे में विचार करूंगा। तृषा ने कहा, हाँ देखा है, ठीक लगा, तभी तो मैंने मिलने की सहमति दी है। इतना कहने के बाद लड़की मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। इस पहले वाक्य में यह पता लग गया कि वह भी जीवन की वास्तविकता को समझती है। अब वह दोनों चर्चा करने लगे, पैकेज पर, स्वभाव पर, पसंद नापसंद पर, फैशन पर, कैरियर पर बातचीत करने लगे। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर वह अड़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हुए। कुछ उसने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, कुछ तृषा ने एडजस्ट किया। बस एक ही बात यथार्थ को ठीक नहीं लग रही थी कि तृषा को रील बनाने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि बैंक की अच्छी खासी नौकरी है, इतना समझौता चलेगा। और भी बहुत सारी बातों पर विचार किया उन दोनों ने। अंत में यह तय हुआ, इस प्रकार पहली मीटिंग में सर्वसम्मत फैसला लेना उचित नहीं, कई मीटिंग करना होगा। इसलिए दूसरी मीटिंग की तारीख दोनों ने मिलकर तय कर ली। उसके बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वह सब होने के बाद भी माता पिता की पसंद आए या ना है, डील फाइनल होने तक हमें पर्याप्त समय लेना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह एक दिन का मामला नहीं है, जीवन का मामला है। थोड़ा सा हम मिलेंगे, कुछ समय बिताकर एक दूसरे को और जानेंगे, थोड़ा सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, तभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानेंगे। और यह तय हो गया कि वो फिर मिलेंगे। मिलने के बाद ही सारे मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे, और जैसे ही फाइनल हो जाएगा तब हम शादी की डील फाइनल करेंगे। यथार्थ और तृषा इस मीटिंग के बाद कई बार मिलने लगे, बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई, और उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जो आज के जीवन के मुद्दे हैं, जैसे फैमिली, चाइल्ड फ्री रखना चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, और तो और शादी से पहले ही तलाक की शर्तें भी तय कर लेते हैं। शादी हाइब्रिड होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे या ट्रेडिशनल। प्री वेडिंग शूट पर तो तृषा ने कहा यह तो होगा ही होगा, क्योंकि उसे रील बनानी है। यथार्थ का कहना था माइक्रो वेडिंग कर लेते हैं। माइक्रो वेडिंग मतलब जिसको कोई शामिल नहीं होता, लड़का लड़की रहते हैं, बस वो माइक्रो वेडिंग कहलाती है। लेकिन तृषा इस मामले पर राजी नहीं हुई, क्योंकि उनका जो शौक है उसे हर अवसर पर रील बनानी है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो। यथार्थ भी तृषा की बैंकिंग नौकरी के कारण सहमत हो गया कि हम प्री वेडिंग शूट करेंगे। जिन जिन बातों पर वो सहमत नहीं हो रहे थे, उस पर वह धीरे धीरे सहमत होने लगे। लेकिन फिर भी विशेषकर कैरियर वाले मामले में बात करते थे, उसमें भविष्य की योजनाएं शामिल थी, विदेश में सेटलमेंट होने के लिए उनका विचार बनता था। परिवार का वह दोनों ही ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके माँ बाप दोनों ही बढ़िया स्थिति थे में, इसलिए वित्तीय योजना के लिए वह अक्सर बातें करते थे कि हम दो हैं, हमें क्या करना है। संतान के बारे में उन्होंने सोचा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन उसके बारे में अगर शादी के बाद फैसला लिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश और शिक्षा के खर्च की जिम्मेदारी का सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़ा हो जाता। अब घर के काम का प्रश्न आया तो यथार्थ के माँ बाप को तो बहू के हाथ की रोटी चाहिए। बैंक में अच्छी नौकरी करती थी और उसे घर के काम नहीं आते थे, जो कि स्वाभाविक है। बच्चों को संभालने काम कौन करेगा, उसे कमन सेट कौन करेगा। मीटिंग में यह बात तय हुई कि उसके बारे में चर्चा तब करेंगे जब संतान पैदा करेंगे। उनके बीच में व्यक्तिगत शौक, रुचियां, सम्मान के बारे में चर्चा हुई और एक दूसरे को स्पेस देने के बारे में भी बात होने लगी। एक दूसरे को स्पेस जरूर देना चाहिए, जब आज के जमाने में स्पेस का मतलब ही क्या हो सकता है कि तुम उसकी निजी स्वतंत्रता का ध्यान रखो और वह तुम्हारी निजी स्वतंत्रता का ध्यान रखे। एक दूसरे से राजी जब होने लगे, एक को रील बनाने का शौक है, एक को डील करने का शौक था कि मन माफिक डील हो जाए। शादी उसके लिए डील की तरह थी और तृषा के लिए कोई भी जीवन का पल हो, उसे रील का शौक था, उसमें दिल का मामला कहीं नहीं था। दिल की कोई बात ही नहीं थी, भावनाओं का कोई सवाल ही नहीं था, एकदम कठोर वास्तविकताओं का पर्वत वो दोनों खड़े थे और समझौते पर पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे की कमजोरी को जानने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे, समझने लगे। इस तरह बार बार मिलने से, मीटिंग करने से बस रहस्य ही समाप्त हो गया, वह उत्सुकता ही खत्म हो गई जो पति पत्नी को विवाह के बाद पहली बार मिलने पर होती है। लगातार मीटिंग, काफी डेट्स, लंच ब्रेक, मुलाकातों और अनगिनत रीलों के बीच एक दिन ऐसा आया जब यथार्थ ने महसूस किया कि अब उनकी बातचीत क्या चाहिए से आगे बढ़कर क्यों चाहिए तक नहीं जा रही। हर मुद्दे पर एक्सेल शीट बन चुकी थी, पैकेज, स्पेस, बच्चों की परवरिश, बस एक चीज तय नहीं थी,
मन जो इतने किंतु परंतु के बाद भी नहीं मिल पा रहे थे उन दोनों के मन।

0: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित साहित्यिक गतिविधि की रेडियो रिपोर्ट 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है, और अब प्रस्तुत है सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। गौहर महल में विगत 5 दिवसों से सितारा प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। 19 मई तक चलने वाले इस विशेष प्रदर्शनी में देश के अलग अलग राज्यों से 75 कुशल शिल्पी और कारीगर अपनी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत भवन में शनिवार से 3 दिवसीय बाल फिल्म समारोह की शुरुआत हुई। इस आयोजन में बच्चों और परिवारों के लिए चुनी हुई उत्कृष्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। छवि प्रभाग भारत भवन द्वारा आयोजित इस समारोह के पहले दिन प्रसिद्ध निर्देशक साई परंजपे की चर्चित फिल्म जादू का शंख प्रदर्शित की गई। इस समारोह में आज बच्चों के प्रिय पौराणिक चरित्र पर आधारित एनिमेशन फिल्म हनुमान का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ लघु एनिमेशन फिल्म कठपुतली का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कला और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिल

0: लगता है। समय शाम दाबों से बाहर निकालकर वास्तविक प्रयोगों के रूप में देखा और समझा। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात त्रगनौर के चार जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले भारत थे और संभव उनकी कर दी। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल।
1: अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य।

0: कुंजन। कार्यक्रम काव्य कुंजन के पिछले भाग में आपने सुना था कि सिद्धार्थ के संबंधी किस तरह सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर विलाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ यशोधरा का पश्चाताप कि अब मैं राजसी जीवन जीकर क्या करूंगी। लीजिए अब सुनिए इसके आगे।
1: अब जो काव्यांश आप सुनेंगे वो यशोधरा के साथ साथ राहुल जननी की मना स्थिति है। खुद रोते हुए पुत्र को अभागा कहते हुए क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? लीजिए सुनिए।
2: चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे, तुझे देख पाते वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता, अब क्या होगा तब कुछ होता, सोकर हम खोकर ही जागे, चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूं रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। तुझको क्षीर पिलाकर लूंगी, नयन नीर ही उनको दूंगी, पर क्या पक्ष पातनी होंगी, मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। चेरी भी वह आज कहां, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट या तुष्ट हो। यह छोटा रस छोना कितना उज्जवल, कैसा कोमल, क्या ही मधुर सलोना, क्यों ना हंसूं रोऊं गाँव में, लगा मुझे यह टोना, आर्य पुत्र आओ सचमुच मैं दूंगी चंद खिलौना, जीर्ण तरि भूर भार देख अरि एरी, कठिन पंथ दूर पार और यह अंधेरी, सजनी उल्टी बयार वेग धर प्रखर धार, पद पद पर विपदवार रजनी घन घेरी, जीर्ण तरि भूर भार देख अरि एरी, जाना होगा परंतु खींच रहा कौन तंतु, गरज रहे घोर जंतु बजती भय भेरी, जीर्ण तरि भूर भार देख अरि एरी, समय हो रहा सपत्न, अपने वश कौन यत्न।

लौट नाथ, ले लें कब लौट नाथ, सौंप बचे चेरी। दैव बनाए रखे राहुल बेटा।

0: क्रीड़ा तनिक बदल जाती है, उसमें मेरी अधीर पीड़ा व्रीड़ा। किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। लटपट चरण चाल अटपट सी मन भाई है मेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आ मेरे अवलंब बता क्यों अंब अंब कहता है, पिता पिता कह बेटा जिनसे घर सूना रहता है। दहता भी है बहता भी है यह जी सब सहता है, फिर भी तू पुकार किस मुंह से, हाँ मैं उन्हें पुकारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आली चक्र कहाँ चलता है, सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल चलता है। आली चक्र कहाँ चलता है, कटते हैं हम आप घूम कर, निर्वश निर्बलता है। दिन कर दीप द्वीप शलभों को पल पल में छलता है, आली चक्र कहाँ चलता है। कुशल यही वह दिन भी कटता जो हमको खलता है, साधक भी इस बीच सिद्धि को लेकर ही टलता है, आली चक्र कहाँ चलता है। गोपा गलती है पर उसका राहुल तो पलता है, अश्रुसिक्त आशा का अंकुर देखूं कब फलता है, आली चक्र कहाँ चलता है।
1: ओ माँ आंगन में फिरता था कोई मेरे संग लगा, आया जो ही मैं अलिंद में छिपा न जाने कहाँ भगा।
0: बेटा भीत न होना वह था तेरा ही प्रतिबिंब जगा।
1: अम्ब भीती क्या,
0: मृषा भ्रांति वह, रह तू प्रीति पगा। ठहर बाल गोपाल कन्हैया राहुल राजा भैया, कैसे धाऊं पाऊं तुझको हार गई मैं दैया। सद दूध प्रस्तुत है बेटा दुग्त फैन सी शैया, तू ही एक खिवैया मेरी पड़ी भवर में नैया। आ मेरी गोदी में आ जा मैं हूँ दुखिया मैया।
1: मैया है तू अथवा मेरी दोथन वाली गैया, रोने से यह रिस ही अच्छी तिलिलिलिताता थैया।
0: तब कहता था लोभ न दे अब चंद खिलौने कीरट क्यों।
1: तब कहती थी दूंगी बेटा माँ अब इतनी खटपट क्यों।
0: कह तो झूठ मूठ बहला दूं पर वह होगी छाया, मुझको भी शैशव में शशि की थी ऐसी ही माया। किंतु प्रसू बनकर अब मैंने उसको तुझ में पाया, पिता बनेगा तभी पाएगा तू वह धन मन भाया।
1: अम्ब पुत्री अच्छा यह मैं झेलू इतनी झंझट क्यों।
0: पुत्र हुआ तो पिता न होगा यह विरक्ति ओ नटखट क्यों।
1: अम्ब यह पंछी कौन बोलता है मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह में तू डूबती है बहती।
0: बेटा यह चातक है।
1: माँ क्या कहता है ये।
0: पी पी किंतु दूध की तुझे क्या सुध रहती।
1: और यह पंछी कौन बोला वाह।
0: कोयल है।
1: माँ क्यों कूक की तू हूक सी है सहती, कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो। कहो कहो किंतु तू कहानी नहीं कहती। नहीं पीऊंगा पय हो चाहे पानी।
0: नहीं पिएगा बेटा यदि तू तो सुन चुका कहानी।
1: तू ना कहेगी तो कह लूंगा मैं अपनी मनमानी।
0: सुन, राजा वन में रहता था, घर रहती थी रानी, और हटी बेटा रटता था नानी नानी नानी।
1: बात काटती है तू, अच्छा जाता हूँ मैं मानी।
0: नहीं नहीं बेटा, आ तूने यह अच्छी हट ठानी, सुनकर ही पीना सोना मत, नई कहूँ या पुरानी।
1: व्यर्थ गल गया मेरा रसाल, मैंने स्वयं नहीं चखा था, माँ चुनकर सौ सौ में इसे पिता के लिए बचा रखा था।
0: वह जड़ फल सड़ जावे पर चेतन भावना तभी वह तेरी, अर्पित हुई उन्हें में वत्स, यही मति तथा यही गति मेरी। निष्फल दो दो बार गई, हार गई माँ हार गई।
1: आगे आगे अंब जहां, मैं पीछे चुपचाप वहां, खोज फिरी तू कहां कहां, फिर कर क्यों ना निहार गई, हार गई माँ हार गई।
0: यहां पिता की मूर्ति यही मेरे तेरे बीच रही, तू इसको ही देख बही, सुध ही शोध बिसार गई, हार गई माँ हार गई।
1: अब की तू छिप देख कहीं, पर लेना निश्वास नहीं, पकड़ा दे जो तुझे वहीं।
0: बेटा मैया वार गई, हार गई माँ हार गई।
1: मेरी भोली माई भला खिलौना लाई,
0: जब देखो अपनी ही कहता मेरी कब सुनता है, क्रीड़ा में ऐसा साथी क्या कोई चुनता है।
1: आहा तू मुस्कुराई मेरी भोली माई, नहीं नहीं उपजाता है माँ यह ममत्व ही गहरा, सहज मधुर भाषी होकर भी यह बराक ही बहरा, मेरा छोटा भाई मेरी भोली माई। अम्ब तात कब आएंगे?
0: धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे, मुझे भले ही भूल जाएं वे।

0: तुझे क्यों न अपनाएंगे। कोई पिता न लाया होगा वह पदार्थ वे लाएंगे।
1: माता पिता पुत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे। देना तू पाथेय प्रेम से विचर विचर खा
0: देख बे मैं जो भी भाग्य मुझे दिखलाएंगे तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख ना छाएंगे।
1: अम्ब मेरी बात कैसे तुझ तक जाती है।
0: बेटा वह वायु पर बैठ उड़ जाती है।
1: होंगे जहाँ तात क्या ना होगा वायु माँ वहाँ।
0: बेटा जगत प्राण वायु व्यापक नहीं कहाँ।
1: क्यों अपनी बात वह ले जाता वहाँ नहीं।
0: निज ध्वनि फैल कर लीन होती है यहीं।
1: और उनकी भी वहीं फिर क्या बड़ाई है।
0: सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है। मन ही के माप से मनुष्य बड़ा छोटा है और अनुपात से उसी के खरा खोटा है। साधन के कारण ही तन की महत्ता है किंतु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है। करते हैं साधन विजन में वेतन से किंतु सिद्धि लाभ होगा मन से मनन से। देख निज नेत्र कर्ण जा पाते नहीं वहाँ। सूक्ष्म मन किंतु दौड़ जाता है कहाँ कहाँ। वत्स यही मन जब निश्चलता पाता है आकर इसी में तब सत्य समा जाता है।
1: तो मन ही मुख्य है माँ।
0: बेटा स्वस्थ देह भी योग्य अधिवासी के लिए हो योग्य गेह भी।
1: विहग समान यदि अम्ब पंख पाता मैं एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं। मंडल बनकर मैं घूमता गगन में और देख लेता पिता बैठे किस वन में। कहता मैं तात उठो घर चलो अब तो। चौंक कर अम्ब मुझे देखते वे तब तो कहते तू कौन है। तो नाम बतलाता मैं और सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता मैं। मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी। मानते अवश्य उसे टालते ना वे कभी। किंतु बिना पंख के विचार सब रीत है। हाय पंछियों से भी मनुष्य गए बीत हैं। हम थलवासी जल में तो तैर जाते हैं किंतु पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं। मानवों को पंख क्यों विधाता ने नहीं दिए।
0: पंखों के बिना ही उड़े चाहे तो इसलिए।
1: पंखों के बिना ही अम्ब
0: और नहीं।
1: कैसे माँ।
0: भूल गया।
1: ओ हनुमान उड़े जैसे माँ क्यों कर उड़े वे भला।
0: बेटा योग बल से।
1: मैं भी योग साधना करूँगा अम्ब कल से। तेरा मुंह पहले बड़ा था अम्ब कह तू।
0: राहुल क्या पूछता है बेटा भला यह तू।
1: रह गया तेरा मुंह छोटा यही कह के। दादी जी अभी तो अम्ब रोई रह रह के।
0: राहुल तू कहता है खा चुका हूँ इतना किंतु मुझे लगता है खाया अभी कितना। बेटा यही बात मेरी और दादी जी की है। होती परितृप्ति कभी जननी के जी की है।
1: रोई किंतु क्यों वे अम्ब।
0: उनके वियोग से वंचित हूँ जिनके बिना में राजभोग से।
1: माँ वही तो छोटा मुँह कहने को तेरा है। दैन्य और दर्प जहाँ दोनों का बसेरा है। चाहे मुँह छोटा रहे किंतु बड़ा भोला है। छोटी और खोटी बात वह कब बोला है। और तेरी आंखें तो बड़ी है अम्ब तब भी।
0: बेटा तुझे देख परिपूर्ण हैं वे अब भी।
1: जब तात यहाँ लौट कर आएंगे और वे भी तेरा मुंह छोटा बतलाएंगे तो मैं सुन उनसे कहूँगा बस इतना। मुंह जितना हो किंतु मानी मन कितना। माँ कह एक कहानी।
0: बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी।
1: क कहती है मुझसे यह चेठी, तू मेरी नानी की बेटी, कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी।
0: तू है हटी मान धन में मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु छिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी।
1: हाँ माँ यही कहानी।
0: गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से।

उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी।

0: की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी।
1: माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी।
0: कोई निर अपराध कुमारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, सो अपने चंचल पन सो मेरे अंचल धन सो। पुष्कर सोता है निज सर में, भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, गुंजन सोया कभी भ्रमर में, सो मेरे गृह गुंजन सो मेरे अंचल धन सो। तनिक पाशर्व परिवर्तन कर ले, उस नासा पुट को भी भर ले, उभय पक्ष का मन तू हर ले, मेरे व्यथा विनोदन सो मेरे अंचल धन सो। रहे मंद ही दीपक माला, तुझे कौन भय कष्ट कसाला, जाग रही है मेरी ज्वाला, सो मेरे आश्वासन सो मेरे अंचल धन सो। ऊपर तारे झलक रहे हैं, गोखों से लग ललक रहे हैं, नीचे मोती ढलक रहे हैं, मेरे अपलक दर्शन सो मेरे अंचल धन सो। तेरी सांसों का सुस्पंदन, मेरे तप्त हृदय का चंदन, सो मैं कर लूं जी भर क्रंदन, सो उनके कुल नंदन सो मेरे अंचल धन सो। खेले मंद पवन अलकों से, पोंछूं मैं उनको पलकों से, छद रद की छवि की छलकों से, पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो मेरे अंचल धन सो।
2: ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं। अपने बालक में यशोधरा को बचपन की कोमलता तथा यौवन की चंचलता दोनों दिख रही हैं, और वो उसके सोने का आह्वान कर रही है। और अगले काव्यांश में संसार और अपने जीवन के सुख दुख की विवेचना में व्यस्त यशोधरा नियति को नाटक के रूप में देख रही है।

भावना का व्यर्थ ही क्यों ढो रही, भर हर्ष में भी शोक में भी अश्रु संस्रति रो रही। सुख दुख दोनों दृष्टियों से सृष्टि सुद बुद्ध

बेला रहे वह जो रही। उलट पड़ा यह दिव रत्नाकर, पानी नीचे ढलक वहां, तारक रत्ना हार सखी उसके खुले हृदय पर झलक रहा। निर्दय है या सदय हृदय वह, मैंने उससे ललक कहा। हंस बोला ग्रह चक्र देख लो, पर न उठे ये पलक। हहा पवन तू शीतल मंद सुगंध, इधर किधर आ भटक रहा है, उधर उधर ओ अंधे। तेरा भार सहे न सहे ये मेरे अवल स्कंध, किंतु बिगाड़ ना दे ये सांसें तेरा बना प्रबंध। मेरे फूल रहो तुम फूले, तुम्हें झुलाता रहे समीरन, झोंके देकर झूले। तुम उदार दानी हो, घर की दशा सहज ही भूले। क्षमा कभी यह उष्ण पाण भी भूल तुम्हें यदि छूले। प्रकट कर गई धन्य रस राग तू, पौ फट कर भी निरुपाय। भरे हैं अपने भीतर आग तू, री छाती फटी नहाए। यह प्रभात या रात है घोर तिमिर के साथ, नाथ कहाँ हो हाय।

अब क्या रखा है रोने में, इंदुकले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में, किसने हाय भरा घर लूटा, अर्णव सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में, अब क्या रखा है रोने में।

अब क्या रखा है रोने में, बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके व्यय न करेगी, अमृत पिए है तू न मरेगी, सब होगा होने में, अब क्या रखा है रोने में।

0: अब क्या रखा है रोने में।
1: यशोधरा का मानना है कि रोने से दुख और बढ़ता है। जब आपत्ति के समय प्राणी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ विपत्ति को पार कर लेता है, तब वो गौरव का भागी बनता है।
0: अभी आपने सुना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का वाचन। आज के भाग में आपने सुना राहुल जननी की मनः स्थिति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य कुंचन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ सुना। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। 6:00 कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी महावीर सिंह के जीवन पर। 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज का विषय होगा गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। 7:00 कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, जिसमें आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और कानून। जानकारी देंगे पर्यावरण संरक्षण और कानून विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव, और इनसे बातचीत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसके अंतर्गत आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित कार्यक्रम का तृतीय भाग सुनेंगे। रात्रि के 8:00 कार्यक्रम देश के संस्थान, आज का विषय होगा आकाश के विजेता भारतीय वायुसेना। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। रात्रि के 9:00 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा का पाठ। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा 5:00 आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत और लोक संगीत का आनंद ले सकते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य

संसाधन नहीं थे। एक क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखलेवादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवुटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और

0: ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था, और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे, जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे, जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत

श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सौंधी सी महक आपके लिए। जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेल खंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।